0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या, क्या, क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है?
1: नहीं तो।
0: रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा, कैसा, कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
2: ए, क्या लगा रखा है ये सब? हाँ, क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga.
0: Mirchi, murga.
2: हेलो
3: हेलो विनीत जी।
2: हाँ जी
3: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
2: सही हाँ, मैं तो चल रही है।
3: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने हैं बैंड के लिए?
2: 7:30 बजे तक।
3: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
2: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना, बच जाएगा।
3: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
2: पागल हो गए हो क्या, क्या बजाएगा अकेला वो?
3: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये नहीं, ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
2: मैं क्या बात करूं यार, अकेला क्या बजाएगा?
3: नहीं वही वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया, ये मिस्टर थॉमस ये
2: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
3: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर, मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चढ़ रहे हैं सर?
2: मैं घोड़ी तो चढ़ जाऊंगा यार।
3: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चढ़ेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चढ़ने वाले चढ़ाएंगे।
2: हेलो हेलो,
3: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
2: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद का बजा रहा है ये?
3: जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
2: अरे कॉफिन ऑफिन कर, यहाँ क्यों लेके आए तुम?
4: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मत मानिए।
2: अच्छा भैया आप मेरे यहाँ वाले थे, बजाने वाले थे।
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स

0: वेल जैस्मिन सैंडलर्स की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची. मैं हूँ आफरीन आपके साथ.
1: Mirchi Mornings brought to you by Kim's Health Medical Center.
0: हाँ जी, गुड मॉर्निंग. शुड मॉर्निंग हो गया है तो हम यहाँ पर वेदर का हाल चाल देख ले.
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान.
1: वेदर अपडेट.
0: वेल आज का वेदर ये कह रहा है दैट मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा. मिनिमम ऑन द अदर साइड इज एट 30 डिग्री सेल्सियस. ह्यूमिडिटी जो है कल से थोड़ी कम नजर आ रही है, 60% पर है. हल्की हल्की हवाएं चल रही है. एट द सेम टाइम बस हमारा अक्टूबर का महीना तो अब शुरू हो ही चुका है. 6th of October आज की तारीख, और उस वजह से मुझे लग रहा है कि 15 अक्टूबर तक का काफ़ी चेंजेस हमारे वेदर में ज़रूर आएंगे, ऐसे मुझे लग रहा है. होपिंग फॉर द बेस्ट. हैविंग सेड दैट, गुड मॉर्निंग. मैसेजेस यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं. जैसे इमरान कहते हैं, हैप्पी मॉर्निंग आरजे आफरीन, रेडी टू बी इन्फेक्टेड बाय योर हाई एनर्जी एंड ऑसम प्लेलिस्ट दिस मॉर्निंग. थैंक यू सो मच इमरान. एंड विद दिस 5000 1896 इज माय व्हाट्सएप नंबर. गुड मॉर्निंग के मैसेजेस यहाँ पर इंतजार में है. तब तक के लिए अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है शाहिद मालिया सुनीति चौहान की आवाज में. From the movie, Jab Harry Met Sejal, enjoy it on Mirchi, it's hot.

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: अग्नि की आवाज में ये गाना फ्रॉम द मूवी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और जब ये गाना मैं सुन रही थी मुझे ये रियलाइज हुआ कि इस गाने में जिस जोश के साथ कूद कूद के उछल उछल के शाहरुख खान डांस कर रहे थे, ऐसे ही जोश मुझे उनका जवान में भी नजर आया। आई मीन देयर इज सो मेनी इयर्स ऑफ डिफरेंस। ये बात में तो यार सच में सल्यूट है शाहरुख खान को। Very good morning and welcome back. आप सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स brought to you by KIMS Health Medical Center.
0: और आफरीन है आपके साथ this beautiful morning. और अगर आपके घर में कोई टीनेजर है, especially कोई हाई स्कूल में है, तो मेरे ख्याल से ये कॉन्वर्सेशन ना कभी चल रही होती है कि यार स्कूल के बाद क्या करना है तुम्हें। एंड देन फिर पेरेंट्स के पास भी ना 25 क्वेश्चन होते हैं, ऑफकोर्स कौन से यूनिवर्सिटी में डालना है, कौन सा कोर्स करेंगे, कैंपस लाइफ कैसी रहेंगी यहाँ पर, फ्यूचर ऑपर्चुनिटीज यहाँ पर क्या है। सो आज इवनिंग में एजुकेशन सिटी में एक काफ़ी यूजफुल इवेंट है विच इज़ स्टडी इन एजुकेशन सिटी। एंड यस, इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये है दैट आज इसका थर्ड एंड फाइनल डे जनरल पब्लिक के लिए ओपन है। यस, आपको कतर फाउंडेशन स्कूल के स्टूडेंट होना ज़रूरी नहीं है। हाई स्कूल स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ यहाँ पर जा सकते हैं। टाइमिंग है आज 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे एंड द वेन्यू इज मुलतका एजुकेशन सिटी स्टूडेंट सेंटर। एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री बट यस प्री रजिस्ट्रेशन जरूरी है। वहां कतर फाउंडेशन की पार्टनर यूनिवर्सिटीज हमद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी और एजुकेशन सिटी के वाइडर इकोसिस्टम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिर्फ कोर्सेज की इंफॉर्मेशन ही नहीं, इनफैक्ट एकेडमिक प्रोग्राम्स, स्टूडेंट लाइफ, पर्सनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज और आगे करियर और लाइफ गोल्स के लिए पाथवेज क्या क्या अवेलेबल है वो भी आप यहाँ जाकर बिल्कुल समझ सकते हैं। एंड मुझे लगता है ना टीनेजर्स के लिए ये स्पेशली यूजफुल है बिकॉज वेबसाइट पे कोर्स पढ़ना इट्स एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग, बट एक ही जगह जाकर ऑप्शंस देखना, क्वेश्चंस पूछना और कैंपस का एक्चुअल एनवायरनमेंट फील करना, ये अपने आप में एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। सो ग्रेड 10, 11, 12 के अगर स्टूडेंट घर में हैं या यूनिवर्सिटी ऑप्शंस एक्सप्लोर करना स्टार्ट करना है तो फिर आज से नहीं सिर्फ आज इनफैक्ट 4 बजे से लेकर 8 बजे का प्लान बना दीजिएगा। नो रजिस्ट्रेशन, नो एंट्री फी, जस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर जाना है एट द प्लेस। लाइक आई मेंशनड, दिस इज इन एजुकेशन सिटी मुलतका एजुकेशन सिटी स्टूडेंट सेंटर। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ। बस अब तो रहमान साहब भी कर रहे हैं, चले चलो भाई दिन की शुरुआत जो की है। एंजॉय दिस ट्रैक ऑन व्हिच यू थॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: तुषार कपूर आपका कैरेक्टर इन गोलमाल फ्रेंचाइज इज सेंसेशनल. कितना मजा आया टू माउथ दोज लाइंस.
3: I don't have to mouth those.
4: Sorry, bro. Sorry.
3: तो मैं क्यों क्रेडिट दूं? नहीं, but I'm a big fan of Sajid Farhad. इनकी नरेशन मतलब they just translate Rohit's vision so well in this zone, in this genre. And I wish I get to do a film someday where I have to mouth their lines.
2: Tushar Kapoor, in fact, we wish कि आपको कभी भी गोलमाल की किसी भी franchise में lines ना मिले. सिर्फ A E I O U. आप सुन रहे हैं मिर्ची. It's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi. It's hot.
5: Festivities की planning, it's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है. अब सिर्फ 25% pay करें and lock in your gold rate 8 November तक. Then if the price increases at the time of purchase, आप पा सकते हैं the booked rate. और अगर gold price drop होती है, you get the lower rate. है ना enough reasons to start the celebrations already? तो आज ही अपना price locked, gold secured कीजिए

यार ये आवाज जो दोनों थी इस गाने में, आई रिमेम्बर, इतनी जबरदस्त पावरफुल आवाज रेमो फर्नांडिस की आवाज में ये गाना साथ देते हुए जसपिंदर नरूला एंड गॉन आर दोज डेज, जब जसपिंदर नरूला के कितने गाने आते थे नहीं 90s में। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक सिंपली आफ्रीन का साथ है दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और आज ये मॉर्निंग आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा खूबसूरत है। देन टेल मी 5000186 व्हाट्सएप कर सकते हो। और एक्स्ट्रा खूबसूरत से मतलब इसका ऐसा है कि अगर आपका हैप्पी वाला बर्थडे है, इफ इट्स योर स्पेशल एनिवर्सरी, एंड एनिवर्सरी कुड बी एनी टाइप, जैसे आप इसी तारीख को इतने साल पहले कतर आए थे, या फिर ये वर्क एनिवर्सरी है, या कोई खास किस्म की, then you can also share that with me. 5000186 is my number, WhatsApp number, यहाँ पर आकर बता सकते हैं। And having said that, मुझे ये बताइए कि कतर में रहकर, कतर में आके आपको कितने साल हुए हैं? I want to know कि मुझे जो लोग सुन रहे हैं, सबसे oldest से oldest कितने साल के हैं? I mean कतर में आए हुए। 5000186, as I said, the WhatsApp number is, और पता है मैं कितने साल से हूँ? मैं कतर में अब एग्जैक्टली देखा जाए तो 13 इयर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। यस, आप भी मुझे बताइए कितने साल से आप कतर में रह रहे हो। चलिए फिर, जहां हमने पावरफुल आवाज़ की बात की है, इनकी आवाज़ भी एक अलग ही किस्म की, रॉ रस्टिक, आई जस्ट लव, एक नमक है इनकी आवाज़ में, रेखा भरद्वाज की आवाज में, दिल्ली 6 का ये गाना आपके लिए ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: अरे, घर में सब टीवी के रिमोट को लेकर लड़ते रहते हैं, क्या करूं?
1: तो तू भी अपना एक रिमोट ले ले, कभी लड़ाई में पीछे नहीं हटना, अपना डिफेंस अपने हाथ में है।

0: के न फोन पे बुलाओगे न शाम की करारी चाय लबों से यूं चुराओगे।
1: यार एक अलग ही किस्म की नशीली आवाज है पापोन की, एंड आई थिंक सो इट्स सो यूनिक कि इनकी आवाज मेरे ख्याल से कोई इतनी जल्दी इमिटेट भी नहीं कर सकता है, और अगर करेगा भी ना तो फिर कैन नॉट रीच क्लोज टू व्हाट ही इज एक्चुअली, है ना। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ। दिस ब्यूटिफुल मॉर्निंग में स्वागत है आपका, और एक सवाल आफरीन ने आपसे पूछा था कि आप कतर में कितने सालों से रह रहे हैं, एंड आई रियली वॉन्टेड टू नो कि यार आई वॉज क्वाइट क्यूरियस टू नो इन फैक्ट कि यार ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल हो सकते हैं। सो पहले तो 6 साल किसी ने कहा, साकिब ने भी कहा यहाँ पर 6 साल है, फिर किसी ने कहा कि उनके भाई जो है यहाँ पर वो 20 साल से यहाँ पर रहते हैं, एंड देन आई गॉट अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज फ्रॉम दिस लेडी, और इनका नाम क्या है, भूमिका। सो भूमिका क्या कहती है जरा सुन लेते हैं उनका एक्सपीरियंस इनका तर।
2: गुड मॉर्निंग आफरीन।
1: वेरी गुड मॉर्निंग।
2: ध्रुव हियर।
1: हाँ जी।
2: कतर में 25 साल हो गए।
1: वाओ।
2: कह सकते हैं जीवन की शुरुआत ही यहाँ की थी।
1: ओके।
2: ऑल थैंक्स टू कतर कि इतनी सुकून भरी जिंदगी, इतनी सुरक्षा भरी जिंदगी देने के लिए।
1: एंड nice.
2: सबसे बेस्ट, मेरी दोनों बेटियों का जन्म भी यहीं कतर में हुआ था।
1: वाओ।
2: सो इट इज रियली रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल कंट्री।
1: हाउ लवली भूमिका, योर वॉइस साउंड्स सो कंटेंट, मतलब आप इतनी सुकून में हो यहाँ पर, आपकी वो आवाज़ में ही छलकता है, एंड यू सो हैप्पी टू बी हियर विद दिस। यहाँ और भी मैसेजेस है, पराश अधिकारी का मैसेज है जो कहते हैं 17 साल से हैं वो कतर में। देन आज़ाद अली फ्रॉम नेपाल, इनका कहना है कि ये 18 साल से हैं कतर में। 5000196 इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, इफ इज देर एनी वन हु इज लिसनिंग टू मी करंटली और वो 25 साल से ज़्यादा से हैं कतर में, आई रियली वॉन्ट टू नो यार, मतलब इट be quite surprising for me. Meanwhile, यहाँ पर 13 साल से ही तकरीबन रहते हुए ऐसा लग रहा है कि यार कितना अरसा हो गया ना हम कतर में गुजार रहे हैं, एंड जैसे भूमिका जी ने बिल्कुल सही कहा है कि बड़ी ही सुकून वाली जिंदगी यहाँ पर हमें जीने मिली है, एंड जस्ट होपिंग मोर फॉर इट विद दिस। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट ट्रैक, सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ में जहाँ सुकून की बात हुई है ना, आई थिंक दिस सॉन्ग ऑल्सो गिव्स दैट सुकून वाली वाइब। ऑफकोर्स हैज टू बी ना, हमारे 90s 2000 के एरा से जुड़ा हुआ है, तो बस एंजॉय करते हुए जाइए। माइक से दिल तक आफरीन है यहाँ पर, आपका इंतजार कर रही है, और मिर्शी इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. Na vjetva la burga.
1: Mirci, burga. Aga. हेलो
2: हेलो, हाँ जी बोलिए।
1: क्या बोलूँ जी, आप बोलिए।
2: आप बोलिए ना।
1: कॉल आपने किया, आप बोलिए।
2: कॉल मैंने किया है। हेलो।
1: अरे बोलो भाई, कॉल तुमने किया, बोलो क्या हुआ।
2: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार, मैं यहाँ सो रहा हूँ, आपने मुझे कॉल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार। आपने नंबर मेरा डायल किया है, मेरे घर बेल बजी है यार।
1: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा। अरे फोन मैंने नहीं किया यार,
2: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार, मेरे यहाँ भी बेल बजी है।
1: नींद में है क्या?
2: मैं नींद में ही था, आपने डिस्टर्ब कर दिया, मैं देख रहा हूँ नंबर।
1: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है?
2: आ जाते उठ के, मैं तो फोन काट रहा हूँ, फोन रखी तेरे। हेलो, हाँ बताइए।
1: तेरी जेब में फोन रखा होगा, वो बटन दब रहा होगा बार बार।
2: बात करनी है तो बात कर लीजिए, आप दो बार फोन कर चुके हैं, आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है। आप बताइए मुझे प्लीज, क्या काम है।
1: हेलो,
2: फिर कोई यार, आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार, मैं आपसे प्यार से बात करने जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं।
1: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा, मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम, मैं फोन नहीं कर रहा।
2: तो आप गाड़ी चलाइए, नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए, आप अपना काम करिए, फोन मत करिए मुझे कम से कम यार, फोन मत करिएगा बस यहाँ पे।
1: फोन नहीं कर रहा अभी
2: आप देखिए, बदतमीजी से बात मत करिए आप, समझ गए। मैं यहाँ से रैप चाटा मार दूंगा, बता रहा हूँ मैं यहाँ से। हाँ मेरे चप्पल लेके आ, ये मेरे हाथ में चप्पल है, मैं बता रहा हूँ। मैं
1: चप्पल
2: पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते, मैं सो रहा हूँ यहाँ पे, फोन क्यों
1: आराम कर दिया तुम जैसे
2: जीना बता रहा यहाँ से। इस बार अगर कर दिया ना तो बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा। चप्पल है मेरे हाथ में,
1: फोन आ रहा है, मेरी आ रहा है फोन, जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले।
2: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ, मेरी बात सुनिए। अभिषेक, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं, तुम मुर्गा बन गए हो। ये सारी कॉल्स मैंने करी थी।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
4: किड्स आर बैक टू स्कूल, बिजी शेड्यूल्स, होमवर्क, क्लासेस, टेस्ट, फ्यू, सो मच टू डू। वी नो एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, बट हे, लिटिल मोमेंट्स ऑफ फन आर इम्पोर्टेंट टू। सो आर यू रेडी टू मेक योर स्कूल डे अ लिटिल मोर एक्साइटिंग?
5: बिकॉज मिर्ची रिचार्ज ड्रिवन बाई GWM इज कमिंग टू योर स्कूल। मिर्ची आरजेस विल बी देयर विद फन, गेम्स, मस्ती, एक्साइटिंग प्राइजेस एंड लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस, बिकॉज लर्निंग कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजर्व्स अ लिटिल फन टू।
4: दिस इनिशिएटिव इज ड्रिवन बाई GWM.
6: Festivities की planning? It's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है. अब सिर्फ 25% pay करें and lock in your gold rate 8 November तक. Then if the price increases at the time of purchase, आप पा सकते हैं the booked rate. और अगर gold price drop होती है, you get the lower rate. है ना enough reasons to start the celebrations already? तो आज ही अपना price locked, gold secured कीजिए with Malabar Gold and Diamonds.
7: Hi, this is Anuradha Podwal.
8: This is Vinod Rathod and we are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
9: Hi, I am Kajiva Raman. We are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
10: Experience the magic of their voice on 30th October 2026 at Aspire Zone Ladies Sports Hall, Doha, Qatar, 6:30 p.m. onwards. In association with Indomie Noodles, Lulu Hypermarket, iPay and Green Printers, online ticketing partners, qtickets.com, Platinum List, Virgin Megastore and S-City. For more information, contact 6004369 and event by Rami Productions International.
11: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
12: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है,
13: कैसे रुक सकता है।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
14: 89.6
3: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: अच्छा, इनके वजह से आपने कतर की ये जगह एक्सप्लोर की है, तो फिर थैंक यू तो बनता ही है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और कतर में रहते हुए ना,

ऐसे कि कतर टूरिज्म अवार्ड 2026 की जो शॉर्टलिस्ट है वो अनाउंस हो गई है। ये अवार्ड्स जो है कतर टूरिज्म और यूएन टूरिज्म के कोलैबोरेशन में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और इस बार रिस्पांस काफ़ी ह्यूज रहा है। 1623 से ज़्यादा सबमिशंस में से 276 नॉमिनीज शॉर्टलिस्ट हुए हैं अक्रॉस 35 सब कैटेगरीज एंड 7 मेन कैटेगरीज। और कैटेगरीज में सिर्फ होटल्स तक लिमिटेड नहीं है, सर्विस एक्सीलेंस के साथ रेस्टोरेंट्स और कैफेज के लिए गैस्ट्रोनॉमिक एक्सपीरियंसेस, अट्रैक्शंस एंड एक्टिविटीज, वर्ल्ड क्लास इवेंट्स, डिजिटल फुटप्रिंट, स्मार्ट एंड सस्टेनेबल टूरिज्म, बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, शॉर्टलिस्ट में आउटस्टैंडिंग फाइन डाइनिंग भी है, कैजुअल डाइनिंग भी है, नोटवर्थी कैफे भी है, ऑथेंटिक कतरी डाइनिंग भी है एंड टूर गाइड ऑफ द ईयर जैसे बहुत सारे अवार्ड्स हैं। लेकिन अब हमारे पार्ट पर आते हैं यहाँ पर कि जैसे मैंने कहा कि यार थैंक यू बोलना तो पड़ता ही है। जैसे कोई कंटेंट क्रिएटर जिसकी वजह से आपको कोई कतर की जगह डिस्कवर की है तो फिर आप कैसे कहेंगे। ये पब्लिक वोटिंग जो है अब ओपन है टिल 12th of October। ये स्पेसिफिकली टू कैटेगरीज के लिए, टूरिज्म इन्फ्लुएंसर यानी कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर और आउटस्टैंडिंग कतर ट्रैवल व्लॉग ऑफ द ईयर। कंटेंट क्रिएटर कैटेगरी में 10 नॉमिनीज हैं और ट्रैवल व्लॉग कैटेगरी में 7। तो अगर किसी क्रिएटर की वजह से आपने कतर की कोई हिडन प्लेस डिस्कवर की कोई या फिर कोई रेस्टोरेंट ट्राई किया है या वीकेंड का प्लान बना है तो अब उनके लिए ऑफिशियली आप वोट कर सकते हैं। वोटिंग कतर टूरिज्म अवार्ड्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर है और विनर्स को 23 नवंबर की अवार्ड सेरेमनी में रिकग्नाइज किया जाएगा। सो स्क्रोलिंग तो वैसे भी हम करते ही हैं, इस बार फेवरेट क्रिएटर के लिए सिर्फ लाइक नहीं एक वोट भी दे देना। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ।

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
1: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
0: Powered by iPay Wallet.
2: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ no stress, सिर्फ trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
3: Let's do the iPay.
0: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
4: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super speciality clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
5: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
6: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
7: Baladna.
6: Taste that Qatar loves.
0: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.
8: 89.6, 89.6.
9: It's hot.

0: वेल आशा ताई और सुरेश वाडकर की आवाज में ये गाना ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ मनोज बाजपेयी का. क्या स्वैग था ये मूवी में. वैसे तो ये मूवी में हीरो कोई और थे, दैट वाज जेडी चक्रवर्ती, लेकिन मनोज बाजपेयी भीकू मात्रे entirely took the spotlight, and in fact in this song Shefali Shah also. What a stunning actress she is. In terms of variation, kitna hai inke paas.
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.
0: वेल मिर्ची मॉर्निंग्स पर आपके साथ जुड़ गई है और आफरीन जैसे आ गई है इस वक्त पर जब आती है तो अपने साथ एक डायलॉग भी लेकर आती है, यानी एक सीन लेकर आती है, क्योंकि हम इस वक्त पर खेलते हैं लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट. और आज का जो सीन है ना, मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए. लेट्स सी दैट. लेकिन आई विल गिव यू सम हिंट, ठीक है. फिलहाल के लिए तो रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाई और ध्यान से ये सीन सुनो.
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट. सीन टेस्ट.
2: 3 साल से मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया.
3: वो तो है, काम तो तू बहुत कर रहा है. वैसे ऊपर वाली की मेहर है तेरे पे.
2: हाँ, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? मतलब आई एम वर्किंग लाइक अ मशीन, मैकेनिकल हो रहा हूं मैं.
3: डार्लिंग, गॉड फॉरबिड तू कभी खराब काम भी करे ना, और उससे बहुत बेटर होगा.
2: यू आर लाइक अ फादर टू मी. मुझे आपसे एक फीवर चाहिए. आप मुझे इस पिक्चर से जाने दीजिए.
3: तू मेरी पिक्चर ने मेरे साथ काम नहीं करेगा? तू
2: मैं ऐसा सोच सकता हूँ.
0: ओके, ये डायलॉग मैंने लंबा इसीलिए सुनाया क्योंकि मुझे आपको एक ऐसा पूरा सिनेरियो समझाना था कि इसमें जो एक्टर है, he is also playing an actor in the movie. तो आवाज तो आपने पहचान ली है, तो ये सोचो कि ये हीरो ने कौन सी मूवी में एक एक्टर का किरदार निभाया है, ठीक है. 5000 1896 इज माय व्हाट्सएप नंबर. आप आकर यहाँ पर बताइए कौन सी मूवी है ये. मैसेज भी कर सकते हो, लाइक टाइप भी कर सकते हो, या फिर वॉइस मैसेज भी भेज सकते हो. लेकिन आवाज़ तो आपने पहचान ली है ना. अब ये सोचो, अगर मूवी नहीं पहचान पा रहे हो तो ऐसा सोचने की कोशिश करो, दिस मूवी इज अबाउट बॉलीवुड इंडस्ट्री, है ना. इतना बड़ा हिंट दे दिया है भाई, बस इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा. चलिए, मीनवाइल श्रुति रानी की आवाज में ये गाना एंजॉय करते हैं. ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: अर्शद वारसे, आपका एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम चल रहा है, चाहे ओटीटी की बात हो या थिएटर की। प्रीतम और पेड्रो में आपने राजकुमार हिरानी से अच्छे खासे पैसे मांगे होंगे, नहीं?
2: पैसे तो मैंने दिए इनको काम करने के लिए। वो पिक्चर चलने पे डिपेंड करता है। पिक्चर बिट गई तो इससे बुरा साल नहीं होगा।
3: उनकी दो, एक सीरीज एक फिल्म, मैं ही हूँ जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हूँ।
1: राजकुमार हिरानी में एवरीवन बी एज अनएम्प्लॉयड एज यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑल
0: बॉलीवुड बोल्डा। Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
4: Looking to grow your business, expand your network and reach the right customers? Introducing the Qatar Business Card Directory, QBCD, the flagship product of Media Plus WLL Doha, now proudly launching its 20th edition. Be part of this major milestone. Enroll your business card today and take your business towards greater visibility and stronger connections. For business inquiries, call 5509389 or download the QBCD app now. Connect, promote, grow.
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: वेल देखो, आपने सही से डायलॉग नहीं सुना तो पछता ही रहे हो ना आप। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, और आज आफरीन ने जो गुगली फेंकी है ना, बहुत से लोगों से संभाल ही नहीं संभली है। और किस बात की बात कर रही है आफरीन? यहाँ पर लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट जो हम खेलते हैं, एक ऐसा सीन सुनाया है जो बहुत पॉपुलर आवाज़ है, ए लिस्टर एक्टर्स की आवाज़ सुनाई है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो पकड़ नहीं पाए इसे। चलिए आप सुन लो और देखो आप जान पाते हो कि नहीं।
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट। सीन टेस्ट।
2: 3 साल से मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया है।
3: वो तो है, काम तो तू बहुत कर रहा है। वैसे ऊपर वाली की मेहर है तेरे पे।
2: हाँ, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? मतलब आई एम वर्किंग लाइक अ मशीन, मैकेनिकल हो रहा हूं मैं।
3: डार्लिंग, गॉड फॉरबिड तू कभी खराब काम भी करे ना, और उससे बहुत बेटर होगा।
2: You're like a father. मुझे आपसे एक फेवर चाहिए।
0: काफ़ी लंबा डायलॉग मैंने सुनाया था, क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ दिस डायलॉग एंड दिस मूवी, कि एग्जैक्टली किस टॉपिक पर ये मूवी है। इसलिए मैंने हिंट भी दिया था, दिस मूवी इज़ बेस्ड ऑन बॉलीवुड, और बॉलीवुड में ये जो एक्टर, ये जो किरदार निभा रहा है, वो एक एक्टर का ही किरदार निभा रहा है, ठीक है। बहुत सारे आंसर्स आए हैं यहाँ पर, गलत जवाब तो आते ही है, लेकिन अहमद मुल्ला है, देन आई हैव योर मेधास, आई हैव न्यू लिसनर्स, अ लॉट ऑफ पीपल मैसेजिंग टुडे, उसके बाद में आई हैव योर, और कौन है ये, अपना नाम लिखा है, लिखा करो यार, सुनीत का है इनका नाम, इफ आई एम राइट, संजीवा, ठीक है, संजीवा का बिल्कुल सही जवाब है। देन आई हैव देव, जिसने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और सही जवाब जो है वो है नागेश का भी सही जवाब है, बाय द वे इट इज लक बाय चांस। यस, लक बाय चांस में फरहान अख्तर भी थे, लक बाय चांस में एक कैमियो था शाहरुख खान का भी, एंड इन फैक्ट दिस मूवी हैड कैमियो ऑफ सेवरल अदर एक्टर्स, बहुत सारे थे, विवेक ओबरॉय थे, अभिषेक बच्चन थे, अक्षय खन्ना, बहुत छोटे छोटे रोल्स में आपको नजर आए थे, लेकिन बॉलीवुड के अंदर एग्जैक्टली क्या चलता है ये इस मूवी में बताया गया था, एंड इन फैक्ट इट वॉज अ वेरी नाइस मूवी आई फेल्ट। बस इसी मूवी का अगला गाना जो मैं प्ले कर रही हूँ, शंकर महादेवन की आवाज और इलाहारून का साथ, राइट इट ऑन माय शील्ड हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: सर, कार में बच्चे उल्टी कर देते हैं, क्या करूं?
1: अरे अरे अरे, सिंपल है ना, तुम एक काम करो, गाड़ी को रिवर्स में चलाओ। कार उल्टी चलेगी तो बच्चे भी सीधी करेंगे।

0: Well, that is Romy or Shreya Ghoshal ki awaaz mein. Ye khoobsurat sa gaana right here on Mirchi. And it's time ke is beautiful morning mein zara sone ke bhav par nazar dal de.
1: Gold update.
0: Well, आज का गोल्ड अपडेट ये कहता है that 1 gram PAM gold bar is for 559 कतरियाल, whereas 5 gram gold bar is for 2617 कतरियाल, 10 gram gold bar PAM is for 5164 कतरियाल, whereas 1 ounce gold bar is for 15960 कतरियाल, 10 तोला gold bar is for 59240 कतरियाल. ये थे आज के गोल्ड रेट्स. तो सोना लेना हो ना लेना हो, लेकिन भाव पे नजर हमेशा रहनी चाहिए. माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ. अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: स्टे अहेड ऑफ टुडेज गोल्ड रेट्स विद अल फरदान एक्सचेंज, पैम्स ऑफिशियल एजेंट इन कतार. माय ऑथेंटिक

0: Mirci. Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vizba la burga. Mirci, burga.
1: Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hall.
2: Hello, ये हंसा से मेरी बात कर रहा हूँ भाई.
3: हेलो, क्या बोल रही हूँ मैं?
2: श्रीनिवासपुरी से हेड कांस्टेबल दरबील सिंह बोल रहा हूँ.
3: हाँ जी.
2: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
3: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी.
2: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है? आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे 3 लोगों ने आपको कॉल किया है, डायलर टोन सुन के एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी, जे ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है, आपको ये पता है? 3 दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
3: मैंने अगर लगा रखा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर टोन उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे.
2: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं, मेरे को पता था, मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
3: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
2: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम. आपका
3: पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई.
2: दफा 300 ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं आपको ये बता रहा हूँ. दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगी आप, समझिए आप. आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करने जा रही हैं?
3: सुनिए मत, सुने. और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार होगा
2: आपके कारण से. हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ पे श्रीनिवासपुरी थाने में, फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है. आप बहस करने जा रही है मेरे से?
3: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
2: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी.
3: हाँ बताइए
2: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
3: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा, मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
2: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा, और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था, और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे
3: यार, आप लोग किसी दिन ना, मतलब किस
4: कुकड़ू को. मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है, फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी. डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस, मीट बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिएट वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल अंडर वन रूफ. तो मार्क योर कैलेंडर 12 से 14 अक्टूबर, DECC दोहा, फूड कतर 2026. कनेक्ट, डिस्कवर और ग्रो.
1: Festivities ki planning? It's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds kaafi hai. Ab sirf 25% pay karein and lock in your gold rate 8th November tak. Then if the price increases at the time of purchase, aap pa sakte hain the booked rate. Aur agar gold price drop hoti hai, you get the lower rate. Hai na enough reasons to start the celebrations already? To aaj hi apna price locked, gold secured kijiye with Malabar Gold and Diamonds.
2: GWM के मिर्ची रिचार्ज में DMIS स्कूल में बच्चों ने किया फन. लेट्स हियर इट फ्रॉम देम.
3: इट वाज द बेस्ट. आई लाइक द मैजिक शो.
4: मैजिक शो एंड यू?
3: इट वाज वेरी नाइस.
4: यू लाइक्ड इट?
3: यस.
4: वी शुड कम अगेन?
3: यस.
4: व्हाट्स योर नेम?
3: आयरा.
4: एंड योर्स?
3: अनविता.
4: व्हाट वाज द बेस्ट?
3: द मैजिक शो.
5: दिस रिचार्ज इज सो कूल. बेटर देन एनीथिंग एल्स.
6: Thank you, Mirchi. Thank you, GWM. We enjoyed. It's hot.
7: खट खट.
8: Who there?
7: बंता.
8: बंता who?
7: अरे बंता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को.
8: खट खट. Who
9: there? Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.

0: कभी आना तुम मेरी गली,
1: कभी आना तुम अपनी गली,
0: कभी आना तुम मेरी गली।
2: वेल, यूफोरिया बैंड यानी पलाश सेन की आवाज़ में ये गाना, एंड आई यूज़ टू लव दिस बैंड बैक इन 90s। इनकी बैंड में ना बहुत एक वेस्टर्न म्यूजिक का भी एक टच था, साथ ही साथ एक इंडियन म्यूजिक का भी टच था। व्हाट अ वंडरफुल ब्लेंड ऑफ म्यूजिक दैट हैड। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। थोड़ा सा बॉलीवुड की बातों से हटकर चलिए जरा काम की बात कर लेते हैं, यानी आपके एक्सचेंज रेट पर नजर डालते हैं। वेल, एक्सचेंज रेट आज तो आसमान पर लग रहा है मुझे। वेल, 1 कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं आपको इंडियन रुपीज 26.40। यस, आई थिंक सो, ये बाय फार हाईएस्ट रहेगा, आई थिंक सो। पाकिस्तानी रुपीज जो है 76.16 पर है। बांग्लादेशी टाका जो है आपको मिल रहे हैं 33.77 पर, और 1 कतरी रियाल के बदले आपको मिल रहे हैं श्रीलंकन रुपीज दैट इज 90.73, एंड नेपाली रुपीज जो है वो आपको मिल रहे हैं 42.17 पर। ये थे आज के एक्सचेंज रेट। घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां, एंड अ वंडरफुल ट्रैक वेटिंग फॉर यू सुर निगम की आवाज में, टाइटल ट्रैक ऑफ द मूवी साथिया, वन ऑफ माय फेवरेट्स यार। एंजॉय इट, माइक से दिल तक आफरीन के साथ। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: आशा ताई आई लव यू यार, मतलब रंगीला मूवी का ये गाना, आशा ताई की आवाज, उर्मिला की वो अदाएं, एंड व्हाट अ मूवी। आई जस्ट वुड अप्रिशिएट कि आशा ताई की आवाज जो थी इस मूवी में भी काफी मैच्योर थी। इफ यू सी, आई थिंक सो शी वाज अराउंड 60 ईयर ओल्ड, बट इतनी अच्छे से वो कॉम्प्लीमेंट कर रही थी उर्मिला को। दैट वॉज वर्सिटैलिटी ऑफ आशा ताई, एंड वी मिस यू। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन है आपके साथ दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग, एंड नाउ इज द टाइम कि आफरीन अपना पिटारा खोले और इसमें से क्या निकलता है आपको बताए। मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स। एग्जैक्टली, आज के मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स में से कुछ स्टार कास्ट के नाम निकले हैं। एक मल्टी स्टारर मूवी है, आपने गेस करना है कि विच मूवी इज आफरीन टॉकिंग अबाउट। वेल, मेरे पिटारे में से निकला है ये नाम जो है सलमान खान, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग ऑफ सो मेनी ऑप्शंस ना, क्योंकि इन तीनों की जो तिगड़ी है, क्या कहते हैं, जोड़ी कहते हैं, तिगड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं, वो काफ़ी सारी मूवीज़ में हमने देखी है। लेकिन इसके अलावा, इन तीनों के अलावा, सलमान, प्रीति और रानी के अलावा, इस मूवी में अमरीश पुरी भी थे और जॉनी लीवर भी थे, एंड फरीदा जलाल जी भी थी। तो बताइए आफरीन कौन सी मूवी की बात कर रही है। 5000 1 8 9 6 90s की एक मूवी है, बड़ी मज़े की मूवी थी, और आई मीन दैट वॉज क्वाइट अ पॉपुलर मूवी। आई मीन तब तो बॉक्स ऑफिस में इस मूवी ने हिट घोषित कर दिया था। ठीक है, सो 5000 व्हाट्सएप नंबर है मेरा, 5000 1 8 9 6। मीन वाइल चलिए दोस्ती के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कॉकटेल मूवी का ये गाना बेनी दयाल और शाल मलिक खोलगड़े की आवाज में, माइक से दिल तक आफरीन तो है आपके साथ।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: भूमि पेडनेकर, हमारे स्कूल में तो टॉयलेट में जाके टॉयलेट करते थे, आपके स्कूल में क्या करते थे?
2: In our school, toilet used to be the place जहाँ पे सब जाके romance करते थे. That used to be the spot in my school.
3: Toilet? हाँ. School था, कंजर खाना खुला हुआ था.
2: The दोनों.
1: इसी कहानी से मुझे लगता है टॉयलेट एक प्रेम कथा का नाम रखा होगा. नहीं, आप सुन रहे थे अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: GWM के मिर्ची रिचार्ज में DMIS स्कूल में बच्चों ने किया फन। लेट्स हियर इट फ्रॉम देम।
5: इट वाज द बेस्ट। आई लाइक द मैजिक शो।
6: मैजिक शो एंड यू?
5: इट वाज वेरी नाइस।
6: यू लाइक्ड इट?
5: यस।
6: वी शुड कम अगेन?
5: यस।
6: व्हाट्स योर नेम?
5: आयरा।
6: एंड योर्स?
5: अनविता।
6: व्हाट वाज द बेस्ट?
5: द मैजिक शो।
7: दिस रिचार्ज इज सो कूल, बेटर देन एनीथिंग एल्स।
8: Thank you, Mirchi. Thank you, GWM. We enjoyed. It's hot.
9: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
10: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
11: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
12: कम है के?
13: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
14: 89.6
15: FM, Mirchi 1.
16: It's hot.

0: वेल, अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज में ये गाना फ्रॉम द मूवी जगा जासूस। मूवी कुछ ज्यादा इतनी पॉपुलर नहीं रही है, लेकिन आई समवट लाइक द वाइब ऑफ द सॉन्ग है ना। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है आपके साथ, और कभी कभी आप लोगों के मैसेजेस ना मुझे इतने मजे के लगते हैं, इट ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन माय फेस। फिलहाल तो बात करते हैं पहले अबाउट हमारा वही बक्सा यार, जो मैं इस वक्त पर खोलती हूँ, मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स। एग्जैक्टली, और आज के मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स में से निकले थे कुछ स्टार्स, यानी स्टार कास्ट थे अबाउट अ सर्टन मूवी, और आपने गेस करना था कि ये सारे जो लोग हैं एक साथ कौन सी मूवी में है। सो वेल, पहले नाम जो था वो था हमारा भाईजान यानी सलमान खान थे, फिर प्रीति जिंटा थी, फिर रानी मुखर्जी थी, देन वी ऑल्सो हैड अमरीश पुरी, फरीदा जलाल जी एंड माई फेवरेट जॉनी लीवर। कौन है जो इतने, इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम दिस ना, इस मूवी में और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन कौन सी मूवी है पहले ये तो जान ले, मैं नहीं बताऊंगी, ये तो आप ही बताओगे। एंड आई एम सो श्योर ना आप दो नाम में जरूर कन्फ्यूज हो रहे, उसके बारे में बाद में बात करते, पहले मूवी का नाम जान लेते हैं।
1: वेरी गुड मॉर्निंग,
0: वेरी गुड मॉर्निंग।
1: द मूवी नेम इज चोरी चोरी चुपके चुपके।
0: ओके,
1: गुड डे,
0: यू टू हैव अ गुड डे। उसके अलावा यहाँ पे मुझे कॉल भी आया था, सलीम का कॉल था, देन आई ऑल्सो रिसीव अ लॉट ऑफ मैसेजेस, जैसे प्रिंसन का था, एंड प्रिंसन जनरली सेंड्स अ वॉइस मैसेज, लेकिन उनका कहना है कि कॉकटेल का गाना मैंने इससे पहले जो बजाया था वो इतने मजे का था दैट ही डिडंट फील लाइक टर्निंग ऑफ द रेडियो एंड सेंडिंग द वॉइस मैसेज। ये मजे के हो यार तुम भी प्रिंसन। जारा का मैसेज आया था सेइंग द आंसर इज चोरी चोरी छुपके छुपके, ताहिर का मैसेज है, अतर हुसैन का मैसेज है, देन आई हैव और कौन है यहाँ पे, मोहम्मद यूसुफ खान का भी मैसेज आया है, लेकिन आई एम सो श्योर कि आप दो मूवीज में कंफ्यूज हो गए होंगे, दैट इज हर दिल जो प्यार करेगा एंड चोरी चोरी छुपके छुपके। इन इनफैक्ट ये जो मूवीज है ना पीछे पीछे से ही आई थी एक के बाद एक, 2000 में हर दिल जो प्यार करेगा थी, एंड देन 2001 में ये थी लव ट्राइंगल अगेन, बट समहाउ दिस अगेन वर्क्ड। वेल, चलिए इसी मूवी का अगला गाना जो मैं बजा रही हूँ अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज में, बहुत सालों के बाद में आप ये गाना सुन रहे होगे, आई एम सो श्योर। बस एंजॉय कीजिए, फिर माइक से दिल तक आप फ्री हैं आपके साथ और नर्चित।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: लंच में रोज क्या ले जाऊं, समझ नहीं आता।
1: मेरी बात मानिए, तो एक बढ़िया सा टिफिन बॉक्स लीजिए और वही लेकर जाइए ना लंच में। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है ये।

0: मुल्तानस मधुबंती बागची और दिव्या कुमार की आवाज में ये गाना, और एक ऐसा टाइम था जब ऑन लूप ये गाना हम सुनते थे, हर जगह ये गाना था, आपके इंस्टाग्राम के रील्स पर, रेडियो पर, एवरीवेयर, एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा सा सैचुरेट हो गए थे हम। लेकिन बहुत दिन के बाद जब मैंने आज ये गाना सुना ना, तो मुझे फिर से अच्छा लगने लगा। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, और आफरीन अंदर की बात लेकर आई है।
1: मिर्ची स्पॉट बॉय, बॉलीवुड की अंदर की खबर। आफरीन मैडम, पता है क्या?
0: Well, मुझे तो पता है, लेकिन क्या आपको पता है, आज आफरीन जो अंदर की खबर लेकर आई है, एक नहीं दो नहीं तीन ऐसी छोटी छोटी अपडेट्स लेकर आई है। सबसे पहले तो एक फिल्म जो 2019 में अनाउंस हुई थी सलमान खान और आलिया भट्ट के साथ थी, और फिर बनने से पहले ही ये बंद हो गई थी, एंड दैट वॉज इंशाअल्लाह। यस, ये मूवी का नाम संजय लीला भंसाली की ये मूवी थी, और अब रिपोर्ट्स ये कहती है, अंदर की सूत्रों की खबर ये है कि अब संजय लीला भंसाली जो है आलिया भट्ट के साथ में जो लव और वार की चल रही है अभी मूवी, काफी टीजर्स, और ये टीजर्स तो नहीं पोस्टर्स हमने देखे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह को रिवाइव करने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि रिपोर्टेडली स्क्रिप्ट पर काफी रीवर्क होगा, मेन लीड भी बिल्कुल लॉक नहीं हुआ है। पहले तो सलमान खान ओरिजिनल चॉइस थे, फिर शाहरुख खान का नाम भी कहीं ना कहीं आया, बट नाउ आई थिंक सो यंगर एक्टर के लेने की बात चल रही है। इस पर जो खबर आएगी तब आफरीन बताएगी। अब दूसरी खबर ये है आफरीन के पास के बंदिश बैंडिट एक सीरीज आई थी, पता है आपको, प्राइम पर, उसकी श्रेया चौधरी है अब आयुष्मान खुराना के अपोजिट YRF की फिल्म मुपापा में लीड करेंगी। रिलीज डेट भी आ गई है 19th of February 2027 में, और यहाँ पर फिल्म जो है समीर सक्सेना डायरेक्ट कर रहे हैं, एंड लेट्स सी, इट्स एन एब्सोल्युटली न्यू पेयरिंग हाउ इट वर्क्स। तीसरी खबर ये है राम गोपाल वर्मा की पुलिस कंपनी, हर्षवर्धन राणे इसमें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नजर आएंगे, दया नायक का रोल कर रहे हैं, और रिपोर्ट्स हैं कि फातिमा सना शेख ने फिल्म के लिए एक स्पेशल अपीयरेंस भी शूट किया है। सो काफी सारी मैंने आपको एक खबर ऐसी दे दी कि एक पुरानी मूवी है जो वापस आ सकती है, एक फ्रेश जोड़ी है वो आ गई है, और उसके बाद में एक क्राइम फिल्म है उसकी भी सरप्राइज एंट्री हो रही है, वो भी राम गोपाल वर्मा की। सो ये थी बॉलीवुड की अंदर की खबर। अगला गाना संजू राठौड़ की आवाज में आपका इंतजार कर रहा है, माइक से दिल तक आफरीन के साथ इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La fiatva la burga. Mirci, burga.
2: हेलो
3: हेलो विनीत जी।
2: हाँ जी
3: विनीत जी, नमस्कार। जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर, क्या हाल चाल है? शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
2: सही हाँ, मैं तो चल रही है।
3: हाँ, तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने हैं बैंड के लिए?
2: 7:30 बजे तक।
3: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
2: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना, बच जाएगा।
3: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाला एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
2: पागल हो गए हो क्या? क्या बजाएगा अकेला वो?
3: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये नहीं, ये अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
2: मैं क्या बात करूं यार, अकेला क्या बजाएगा?
3: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया? ये मिस्टर थॉमस ये
2: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
3: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चढ़ रहे हैं सर?
2: मैं घोड़ी तो चढ़ जाऊंगा यार।
3: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चढ़ेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चढ़ने वाले चढ़ाएंगे।
2: हेलो हेलो,
3: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
2: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये?
3: विनीत जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ विनीत, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया सर, आप बुरा मत मानिए।
2: अच्छा भैया आप मेरे
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: किड्स आर बैक टू स्कूल, बिजी शेड्यूल्स, होमवर्क, क्लासेस, टेस्ट, फ्यू, so much to do. We know education is important, but hey, little moments of fun are important too. So are you ready to make your school day a little more exciting?
6: Because Mirchi Recharge driven by GWM is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises, because learning comes with responsibility, but responsibility deserves a little fun too.
5: This initiative is driven by GWM.
7: Back to school means more journeys, more traffic and more reasons to drive with peace of mind.
8: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400 with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start and lockout assistance, plus flexible payments and 7% cashback.
9: Call 800-0786 or visit bimaonline.com.
7: Bima, for your peace of mind. Terms and conditions.

0: खट खट
1: कौन है?
0: अज्जू।
1: अज्जू कौन?
0: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए। होए
1: खट खट हू दैट
2: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।
3: बिल्कुल कुछ गाने ऐसे होते हैं ना कि वो स्पेसिफिक सिंगर के लिए ही बने होते हैं और किसी की आवाज में अच्छे नहीं लगते। बस ऐसे ही अगला गाना मेकअप आजी की आवाज में 440 वोल्ट देता हुआ और मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: अच्छा एक आंकड़ा बता रही हूँ आपको, गेस करो कि किस चीज का हो सकता है। 628,118। नहीं नहीं, ये कतर में रहने वाले इंडियंस की पॉपुलेशन नहीं है।
0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: अच्छा एक आंकड़ा बता रही हूँ आपको, गेस करो कि किस चीज का हो सकता है। 628,118।

चेक करके देखें तो सबसे बड़ा शेयर जो है फैमिली मेडिसिन क्लिनिक से आता है, मोर देन 3 लाख विजिट्स. उसके अलावा डेंटल क्लिनिक्स में अराउंड 39,000 से ज्यादा विजिट्स हुए हैं, वेल बेबी क्लिनिक्स में 17,000 के करीब और मेटरनल हेल्थ क्लिनिक में ऑलमोस्ट 8,000 विजिट्स रिकॉर्ड हुए हैं. लेकिन मुझे एक नंबर और इंटरेस्टिंग लगता है, हेल्थ केयर के बारे में हम सिर्फ फिजिकली हेल्थ सेंटर्स जाने तक लिमिटेड नहीं है. सितंबर में PHCC ने 40,000 से ज्यादा टेलीफोन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड किए हैं और PHCC का 1600 कॉल सेंटर सेपरेटली 14,000 से ज्यादा कॉल्स हैंडल कर चुका है. और जब आप एक महीने के ये सारे नंबर्स एक साथ देखते हैं तब एक्चुअली रियलाइज होता है कि कतर का प्राइमरी हेल्थ केयर नेटवर्क कितने बड़े स्केल पर एवरीडे लाइफ का पार्ट है. फैमिली डॉक्टर्स से लेकर डेंटल केयर, मदर एंड बेबी सर्विसेज और फोन कंसल्टेशंस तक हर दिन थाउजेंड्स ऑफ पीपल किसी न किसी फॉर्म में सिस्टम यूज कर रहे हैं. 6,28,000 प्लस विजिट्स इन जस्ट वन मंथ नंबर बड़ा है, लेकिन उसके पीछे सिंपल सी बात यह है कि हेल्थ केयर अवेलेबल होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि उस तक पहुंच पाना. माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: Need to send money home? Make it fast, make it safe, make it Alpha Dhan Exchange.
6: Your trusted choice for sending money, foreign currency exchange and gold bars and coins. Visit our nearest branch or download the Alpha Dhan Exchange app now. For assistance, call or WhatsApp 4453-7777.
7: Подумайте, какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь.
4: Mirchi Terminal Season 5, coming soon. Coming soon. Mirchi Terminal Season 5, partnered by Papa John's.
8: Qatar, are you ready for the new pan pizza from Papa John's? Crispy garlic parmesan crust, Italian seasoning, 6 cheese blend and cheese edge to edge. The new standard of pan in Qatar at Papa John's. Order now.
4: Powered by iPay Wallet.
9: अपनो को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ. No stress, self trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
10: Let's do that iPay.
4: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
11: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super speciality clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
12: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
13: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
14: Baladna.
13: Taste that Qatar loves.
4: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.
15: Bollywood Bordal.
16: Bollywood Bordal.
17: Only on Mirchi. It's hot.
1: कंगना रनौत, आपका जो होने वाला हस्बैंड है उसने आपको छोड़ दिया है एक समोसे के लिए, आप उस समोसे को क्या कहेंगे?
18: जिंदगी में एक ऐसा काम किया है जो कि एक नींबू और मिर्च भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि तुमने मेरी नजर उतारी है। अच्छा तुम उसे ले गए और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अब हम दोनों मिलके चाय पियेंगे। एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी चाय के साथ।
1: समोसे के साथ एक हाइपोथेटिकल कॉन्वर्सेशन करती हुई कंगना रनौत ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
19: Bollywood Bordal.
17: Only on Mirchi, it's hot.

0: देखिए, प्यार जताने के न जाने कितने सारे तरीके होते हैं ना। कोई कह देता है, कोई अपने एक्शंस के थ्रू जता देता है, और कुछ लोग वो शिकायत करके भी प्यार ही जता रहे होते हैं। और गुलजार साहब की अगर बात करें तो इनकी लाइंस मुझे ये बात बड़ी खूबसूरत लगती है कि बड़े सिंपल से अल्फाज, लेकिन बात सीधा दिल के किसी कोने में जाकर इनकी बैठ जाती है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: तो अर्ज किया है, आज के लाइंस गुलजार साहब के हैं कि सारे शिकवे जनाब उसके हैं, सारे शिकवे जनाब उसके हैं, दिल पर सारे आजाब उसके हैं, वो याद आए तो नींद नहीं आती। सुन रहे हो, वो याद आए तो नींद नहीं आती, नींद आए तो सारे ख्वाब उसके हैं। हाय, मतलब जनाब से शिकायत भी है, नींद खराब करने का इल्जाम भी उन्हीं पर है, और ख्वाबों में जगह भी उन्हीं की रिजर्व्ड है। अब इससे ज्यादा प्यार का कन्फेशन और प्यारा हो सकता है? माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ अनवर शीत हॉट।

श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना, और इसी के साथ मेरा स्कूल जाने का वक्त हो चला है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सोच रहे हो कि आफरीन क्या बोल रही है, जनरली वो कहती है घर जाने का वक्त हो चला है, गलती से तो कहनी थी। नहीं, नो गलती इज दिस टाइम, बिकॉज सच में मेरा स्कूल जाने का वक्त हो चला है, क्योंकि मिर्ची रिचार्ज जो GWM के साथ में हम कर रहे हैं, टुडे वी आर गोइंग टू आइडियल इंडियन स्कूल। अरे क्या मज़ा ही आ जाता है यार जब हम स्कूल में जाते हैं। पहले तो मज़ा मुझे ये आता है कि हम GWM में बैठ कर जाते हैं बड़े ही एकदम शान से, आराम से, फुल कंफर्ट में। उसके बाद जब हम स्कूल पहुंचते हैं ना, ओ माय गॉड, इतना जबरदस्त फ्लैशबैक डायरेक्टली बैक टू 90s। वो स्कूल के डेस्क, वो स्कूल के बेंचेस, वो स्कूल का माहौल, कॉरिडोर्स, बच्चे, टीचर्स, इट्स लाइक आई थिंक सो अपनी लाइफ का, आपकी मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत जो पल था ना, वो स्कूल का ही था। एंड वी डिडंट इवन रियलाइज व्हेन वी वर लिविंग दोज मोमेंट्स कि यार हम हमारा गोल्डन पीरियड जी रहे हैं। अब जाकर हम ये उन बच्चों को रियलाइज जरूर करवाएंगे, भाई बॉस बड़े ना एकदम धीरे धीरे से हो जाना, ये जो वक्त है ना एकदम जबरदस्त वाला है, इसे पूरी तरह से इंजॉय करो। सो इसी के साथ अब तो फिलहाल मैं लेना चाहूंगी अलविदा। अगर आपको स्कूल की मस्ती देखनी है ना क्या करती है मिर्ची, तो जरूर जाइए इंस्टाग्राम पर मिर्ची वन कतर पेज फॉलो कर दीजिए, स्टोरीज पर आपको सब धमाल नजर आएगा। मीनवाइल सोनू निगम और असीस कौर की आवाज में अगला गाना आपको दे जा रही हूँ, और आपसे इजाजत लेती हूँ, तो इजाजत है बने रहिएगा मिर्ची के साथ। माइक से दिल तक आफरीन है और मिर्ची इज हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
0: अरे भाई, इतनी भागदौड़ में मैं अपने लिए वक्त कैसे निकालूं?
1: तो यार, भागदौड़ में वक्त निकाल के देखना ना मुश्किल होता है। तू एक काम कर, घड़ी हाथ पे पहन, रिस्ट वॉच। जब वक्त देखना हुआ, हाथ घुमा के देख लिया, सिंपल।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot. Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.

0: वलेर रहमान की गजब की कॉम्पोजिशन, साथ ही उनकी प्यारी सी आवाज, अनुराधा श्री राम का साथ, एंड आई जस्ट लव दिस टाइटल ट्रैक। भाई साहब, दिल को छूने में ये गाना जो है ना, कहीं कोई कमी ना छोड़ता। लेकिन आज किसी की कोई तो बात है जो मेरे दिल को जेन्युइनली छू ही गई।
1: मिर्ची अंशु
0: Very good morning, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aajanshu with you. Well, नए शो की शुरुआत करते हुए एक बार फिर से आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए आ चुकी हूँ। आज के दिन को देखने की कोशिश करें। सो ट्यूसडे 6th of October पर पहुंच चुके हैं। यार पता है क्या, आज जब मैं ऑफिस आई तो किसी ने मुझे आज एक बहुत अच्छी बात सिखाई। जिंदगी में ना अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जब भी हमें लगे कि कोई बात हमारे मन मुताबिक नहीं हो रही है, तो भाई सबसे पहला रिएक्शन अगर कुछ निकलता है तो वो है अंदर से फ्रस्ट्रेशन। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस फर्स्ट रिएक्शन को काबू कर सकें या कंट्रोल कर सकें। हम जैसे आम लोगों की लाइफ में तो बस यही होता है। अब जब वो फ्रस्ट्रेशन होता है तो भाई अंदर उसे कैद रखें तो कैसे रखें, किसी ना किसी पर तो निकालना है। तो इंस्टेंटली मन करता है उसी इंसान पर निकाल दें जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में गजब का कोहराम मचा है। यार लेकिन एक बात जो आज मुझे सिखाई गई वो बड़ी आसान है कि माना लड़ने के लिए, यू नो, इंस्टेंटली रिएक्ट करने के लिए हजार वजह है, लेकिन लेट गो, अगर इस टर्म को आप देखने और सीखने की कोशिश करें ना भाई, और इसकी वजह देखने की कोशिश करें, तो इतना समझ जाएं लेट गो करने की जिंदगी में लाख वजह है। तो क्यों ना अपने दिमाग को और औरों के दिमाग को ख़राब करने के बजाय बातों को इग्नोर करें, अगर जेन्युइनली हमारी ज़िंदगी में उस बात से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, और लेट गो कर आगे बढ़ें, करके देखो मज़ा बड़ा आता है। चलिए जी, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ करते हैं आज के शो की शुरुआत। रितु पाठक के निखिल डी सूजा की आवाज़ में ये अगला पावर पैक ब्रांड न्यू ट्रैक आपके लिए, इन्जॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. ¡Rámbala! ¡Murga, murga! ¡La fiesta la murga! ¡Mirchi, murga!
2: ¿Aló?
3: Could I speak to Manish, please?
2: Speaking.
3: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से. ओके मनीष, आई नीड योर फेवर. आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी. मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को. मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, कि पहले इंसान एप था. आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में. यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया. राइट,
2: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
3: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ. 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे. इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके.
2: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा
3: हूँ. वही तो, ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था. तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे. तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर. आई एम श्योर कि सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था. बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी. तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए. कल का रख ले. मेरी बात सुनो. आई एम प्रोफेसर. मेरी बात सुनिए यार. आप हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है.
2: हेलो,
3: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी. मेरी बात सुनिए. मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने. उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार. मैं मुर्गा बनाया है, तुम रेडियो मिर्ची पे हो. आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार. मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने जो लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार. इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
1: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
0: Powered by iPay Wallet.
2: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ. No stress, सिर्फ trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
3: Let's do the iPay.
0: In association with Dairy Queen. Beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
4: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super speciality clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
5: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
6: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
7: Baladna.
6: Taste that Qatar loves.
0: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.

Well, मधुबंदी बागशी की आवाज, सचिन जिगर की कॉम्पोजिशन, व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज. ये प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन कोई खास बात बता दूं. Well, जिन दिनों का बेसब्री से इंतजार था, उन दिनों ने हमारी जिंदगी में दस्तक देना शुरू कर ही दिया है. Well, इस वक्त अगर हम कतर की बात करें, मौसम के पूरे के पूरे नजारे को देखने की कोशिश करें, तो इतना बता दूं, अभी इस वक्त हम उस फेज को जी रहे हैं जहां पे टेम्परेचर ग्रेजुअली डाउन होना शुरू हो चुका है. Having said that, ये 10 दिन की जर्नी हमें और ट्रेस करनी है, उसके बाद ऑफिशियली कतर में आप और हम मिलकर अगर दिल खोलकर किसी मौसम को वेलकम करेंगे, सो इट इज गोइंग टू बी विंटर का, यानी कि ठंडी का मौसम. भाई साहब, मैंने तो अभी से रेसिपी जो है उसकी लिस्ट बनानी शुरू कर दी है. ठंड का मतलब होता है सॉलिड खाना पीना, एंड साथ में अच्छी तरह से तशरीफ उठाकर जरा दौड़ भाग कर उसे पचाना. वेल, मक्के की रोटी जो है मेरे घर पे जरूर बनेगी, सरसों का साग जो है मैं आपके घर से लेकर आऊंगी. नो, ऐसी कुछ प्लानिंग कर लेते हैं, पॉटलक टाइप्स, क्या कहती पब्लिक. अच्छा, एक बात बताएं, अगर ठंड के दिनों की मैं बात करूं, तो क्या आपके घर की ऐसी कोई आइकॉनिक रेसिपी है, कोई लड्डू, कोई मावे का कोई आइटम जो बचपन से बना आ रहा है? नहीं, मेरे घर में ठंड में लड्डू जरूर बनता था. हाउ अबाउट यू गाइस? आई वुड वांट टू नो दैट स्पेसिफिक थिंग दैट वाज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड फॉर विंटर सीजन ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड डेज. 5000 1896. आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम. मिर्ची वन कतर या मिर्ची अंशु. मीनवाइल, सुबोध शर्मा की आवाज में यह अगला गाना, एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
6: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
7: बार बार
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: यार सच कह रही हूँ, कोई प्रमोशन कोई ऑफर आए या ना आए, लेकिन हाँ इसका आना जो है हमारी जिंदगी में बेहद जरूरी है।
1: मिर्ची अंशु,
0: अरे बस उसी ऑफर उसी प्रमोशन की बात कर रही हूँ कि बदलते मौसम के साथ सर्दी और जुखाम का आना। हाँ ये ना आए तो उसके बगैर मौसम कैसे बदले। वल जहाँ पे एक तरफ गर्मियाँ जो है ऑफिशियली कतर से अलविदा कह चुकी हैं, ऑटम सीजन ने दस्तक दे दिया है, लेकिन वहीं बदलते मौसम के साथ सर्दी और जुकाम की लहर एक बार फिर से देश में देखने को मिल रही है। तो वल इतना ही कहना चाहूँगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुद को फुल्ली हाइड्रेटेड रखें, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा एक फंडा है, एक सिंपल सी फिलॉसफी है कि मैं कुछ करूँ या ना करूँ, जब भी मुझे ऐसा लगे कि मौसम जो है वो बदल रहा है, आई मेक श्योर कि कुछ दिनों तक मैं रेगुलरली रात में सोने से पहले स्टीमिंग करती हूँ, एंड साथ ही गुनगुने पानी से नमक के साथ गार्गल करती हूँ। एंड सच कहूँ, इट हैज़ रियली हेल्प मी प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम ऑल द वायरल इन्फेक्शंस। ये मेरा नुस्खा है जो ज़रूर काम आता है, शायद आपके लिए भी हो जाए। तो बस कुछ दिनों तक इसे अडॉप्ट कर लो, फिर बाद में ठंडी का मौसम आया, बल्कि आइसक्रीम खाएंगे आपके घर। एन्जॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: हुमा कुरैशी, आपका जो किरदार है बेबी डू डाई डू में, उसे महाराष्ट्रन बनाने की कोई खास वजह थी?
3: नचिकेता सर आए, उन्होंने पढ़ी एंड देन एट सम पॉइंट नो आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ ही इज अ महाराष्ट्रन बॉय। आई थॉट माय डायरेक्टर विल बी वेरी हैप्पी, अरे वाह यू नो ये हमारे खेड़े की कुछ वो करना चाहती है, बट आई थिंक वो डिसअपॉइंट हो गए कि ये नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने बोला कि तुम महाराष्ट्र नहीं हो पिक्चर में, मगर तुम बोल नहीं सकते।
2: ये थी हुमा कुरैशी टॉकिंग अबाउट बेबी डू डाई डू ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
5: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
6: आएंगे दीदी।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: भाई साहब, वो टूटता हुआ तारा मुझे पिछली बार कुछ कुछ होता है फिल्म में नजर आया था, आपको कभी नजर आया क्या?
1: मिर्ची अंशु
0: हाय, मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि एक बार वो टूटता हुआ तारा नजर आ जाए और मैं भी जो हूँ अंजलि और राहुल की तरह कोई तो अपने दिल की ख्वाहिशों तक पहुँचाऊँ, इस उम्मीद में कि मेरी दुआ कबूल हो। मतलब अगर आपको लगता है कि शूटिंग स्टार्स देखना आपको पसंद है तो अक्टूबर में ज़रा आसमान पर अपनी नज़र जो है ना वो बनाए रखिएगा, क्योंकि 21-22 अक्टूबर के आसपास ओरियोनिड मिटियोर शावर अपने पीक पर होगा। मतलब आसमान में काफ़ी सारे शूटिंग स्टार्स, वो टूटते हुए तारे आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन पता है यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर साइंस की नज़र से देखने की कोशिश करें तो ये शूटिंग स्टार्स एक्चुअली हैलीज कॉमेट से कनेक्टेड है। हैलीज कॉमेट जब स्पेस में ट्रैवल करता है तो अपने पीछे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स छोड़ जाता है, और जब अर्थ उन पार्टिकल्स के बीच से गुजरती है तो हमें आसमान में वो शूटिंग स्टार्स की तरह कुछ तो चमकते हुए नजर आते हैं। मतलब हैलीज कॉमेट खुद मिलने हमसे नहीं आ रहे, लेकिन हाँ अपने पार्टिकल्स की झलक जो है हम तक जरूर पहुंचा रहे। तो मैं तो सोच रही हूँ क्या पता सही में ये टूटते हुए तारे से इस बार कुछ ना कुछ मैं मांग लूं और आपके दिल की तरह मेरे दिल की ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। क्या कहती पब्लिक? स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
0: ए मोटा भाई, मेरी मेड बार बार छुट्टी पर चली जाती है, मैं क्या करूं?
1: अरे तो बढ़िया है ना, तू भी ऑफिस से छुट्टी ले ले और मेड के साथ छुट्टी एंजॉय करना डालेंगे।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

यार सच कह रही हूँ, द मोमेंट मुझे पता चला कि ऐसा कोई कंपटीशन हो रहा है, मेरे दिल से पहला रिएक्शन बस यही निकला, अरे भाई साहब इस चैंपियनशिप में तो मेरी मम्मी को पार्टिसिपेट करना चाहिए था। मिर्ची अंशु अजी पावर स्लैप जैसे कंपटीशन की बात हो और उनमें मम्मियों का नाम ना आए तो बताएं किसका ही आए। बिल्कुल ठीक सुना आपने। वाल इस वक्त अगर मैं दोहा को देखने की कोशिश करूं, सो 19th ऑफ नवंबर इज गोइंग टू बी इंडीड वेरी एक्साइटिंग बिकॉज पावर स्लैप 27 इज फाइनली कमिंग टू दोहा। अली बिन हमद अल अतिया अरीना में अच्छे अच्छे लोगों को आप झापड़ खाते हुए देखेंगे, नो पापड़ की तरह। वेल ये जो कॉम्पिटिशन है ये पूरी तरह से प्रोफेशनल स्केल पर होस्ट किया जाता है एंड कम्पेटिटर्स लिटरली फेस टू फेस खड़े होकर एक दूसरे को थप्पड़ मारते हुए नजर आते हैं। Now this is an actual regulated sport. Well, इतना ही मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसा कोई competition हो तो क्या आपके दिल में मेरे दिल की तरह ख्याल आता है कि Indian moms को यहाँ पे entry मिल सकती है क्या? क्योंकि हमारे बचपन में तो power slap के लिए ना arena चाहिए था, ना कोई referee, ना कोई championship title, बस मम्मी को जरा सा छेड़ना था या report card में marks जो है वो थोड़े कम लाने थे एंड उसके बाद देखो इसका सिलसिला क्या पावर पैक तरह से हमारी जिंदगी में शुरू हुआ करता था। क्या आपने खाया झापड़ पापड़ की तरह? 5001896 waiting for your messages. Instagram मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। Meanwhile you all stay tuned to मिर्ची बंदी का नाम अंशु। Enjoy.

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो
4: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो। मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
3: मोबाइल
4: ये सर आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
3: क्या रिपोर्ट आ गई है?
4: यही कि ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
3: मोबाइल चोरी हो गया?
4: हाँ जी। भाई साहब हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
3: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
4: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
3: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
4: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
3: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
4: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
3: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
4: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
3: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
4: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
3: हाँ जी सर।
4: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
3: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
5: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर।
3: कुकड़ों को
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पगला।
7: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
8: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
9: दोनों मिलेगा।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
11: 89.6
12: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: यार क्या हर रिश्ते का एक नाम हो ये जरूरी है?
1: मिर्ची अंशु
0: कभी महसूस किया है कि कुछ लोग जिंदगी में आते तो बिना किसी नाम के हैं, पर दिल में उनकी जगह हर नाम से ज्यादा खास होती है। कभी सोचा है कि आखिर हम हर रिश्ते को एक नाम क्यों देना चाहते हैं, किसी दायरे में क्यों बांधना चाहते हैं? कभी दोस्ती, कभी मोहब्बत, कभी खून का रिश्ता, कभी अपनापन या कभी कुछ और। शायद कुछ रिश्ते इन सभी सवालों से बहुत ऊपर होते हैं, क्योंकि सबसे खास बात क्या है ना, इनमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती और शायद इनकी कोई डेफिनेशन भी नहीं होती। लेकिन हाँ, इनमें एक चीज जरूर पाई जाती है और वो है सुकून। कोई ऐसा जिससे शायद रोज बात हो ये जरूरी नहीं, पर जब बात हो तो लगे दिल ने सब कुछ बस कह ही दिया। और शायद हर खूबसूरत रिश्ते को नाम देना जरूरी भी नहीं, क्योंकि कुछ रिश्ते ना सिर्फ महसूस किए जाते हैं। कहते हैं ना, कभी नाम नहीं दिया फिर भी रिश्ता खास रहा, वो दूर होके भी जाने क्यों दिल के पास रहा। ना कोई वादा था, ना मिलने की कोई वजह, बस एक खूबसूरत सा एहसास था जो हमेशा साथ रहा। कोई याद आया? 5000 1896 वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची1 कतरिया मिर्ची अंश। एंजॉय।

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष।
6: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मेरे पापा की ना मेरी मम्मी को मनाने की ये निंजा टेक्निक हुआ करती थी।
1: मिर्ची अंशु
0: यार सच कह रही हूँ, मतलब लड़कियों के लिए जिंदगी में शॉपिंग जो है ना सिर्फ जरूरत का सामान खरीदने का एक जरिया नहीं है भाई साहब, हमारी जिंदगी में हमारे लिए थेरेपी है। एंड पापा ने ना शादी के ठीक बाद मम्मी के बारे में ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ ली थी। आई एम प्रीटी श्योर आप जो है समझ ही गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो आप जो है समझ ही जाएं। एंड खासकर अगर गोल्ड परचेसिंग की बात करें भाई साहब, ये जो है ना लाइफ में परम सुख लाने का काम कुछ ऐसा करता है कि हमारी जिंदगी की जो खुशहाली है वो पूरे घर पे नजर आती है। तो क्यों ना आपके घर पे भी ये रौनक मैं बरकरार रख ही दूं। जरा देखें अल फरदान एक्सचेंज में आज का गोल्ड रेट क्या कहता है।
2: गोल्ड अपडेट।
0: वैसे अगर आज आप परचेसिंग करना चाहेंगे सो पैम्प 1 ग्राम गोल्ड एडी फॉर्चुना बार टुडेज प्राइस एट कतरी रियाल्स 559, अगर मैं बात करूं 5 ग्राम्स की सो इट इज प्राइस एट कतरी रियाल्स 2617, 10 ग्राम्स की बात करें सो इट इज प्राइस एट कतरी रियाल्स 5164, अगर 1 आउंस को देखें सो इट इज प्राइस एट कतरी रियाल्स 15960, वहीं 10 तोले की बात करें तो बॉस इट इज प्राइस एट कतरी रियाल्स 59240। सो मौका भी है दस्तूर भी, क्यों ना गोल्ड परचेसिंग हो ही जाए। Enjoy. Bandi ka naam Anshu.
2: Stay ahead of today's gold rates with Al Fardan Exchange, PAMP's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAMP gold bars
3: and earn Qatar Airways Avios today.
2: Visit our branches or download the app now.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: तुषार कपूर आपका कैरेक्टर इन गोलमाल फ्रेंचाइज इज सेंसेशनल. कितना मजा आया टू माउथ दोज लाइंस.
3: I don't have to mouth those.
4: Sorry bro. Sorry.
3: तो मैं क्यों क्रेडिट दूं? नहीं, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ साजिद फरहाद. इनकी नरेशन, मतलब दे जस्ट ट्रांसलेट रोहित्स विजन सो वेल इन दिस जोन, इन दिस जॉनरा. एंड आई विश आई गेट टू डू अ फिल्म समडे वेयर आई हैव टू माउथ देयर लाइंस.
2: तुषार कपूर, इनफैक्ट वी विश कि आपको कभी भी गोलमाल की किसी भी फ्रेंचाइज में लाइंस ना मिले, सिर्फ ए ई आई ओ यू. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा.
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
5: खट खट,
6: कौन है?
5: इशांत.
6: इशांत कौन?
5: इशांत गदाधारी भीम. इशांत.
6: खट खट, who that?
1: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

आज के डेट में अगर मैं वक्त की बात करूं, टाइम की बात करूं, तो सबसे बड़ा मुद्दा हर किसी की जिंदगी में अगर कुछ बना हुआ है तो वो है स्क्रीन टाइम। मिर्ची अंशु जरा सोचे ना, हर एक माँ बाप का आज के डेट में सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि भाई अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम किस तरह से कम किया जाए। बस हम खुद का तो कर नहीं पा रहे, बच्चों के लिए लेकिन काफी कंसर्न है। इतना बता दूं कि आज के डेट में स्क्रीन बच्चों के लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं रहा, उनकी डे टू डे लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बन गया है कि इतना जरूरी है जितना कि ऑक्सीजन। वेल, इसी कंसर्न को समझते हुए, इसकी सीरियसनेस को समझते हुए इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड फैमिली ने लॉन्च किया है एक 14 वीक का नेशनल कैंपेन, देयर प्रोटेक्शन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पर 120 से ज्यादा एजुकेशनल एक्टिविटीज, वीडियोज, वर्कशॉप्स, स्कूल विजिट्स, पेरेंट्स के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन हर तौर पर एस्टैब्लिश किया जाएगा ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जा सके, उन्हें डिस्ट्रैक्ट किया जा सके एंड स्क्रीन से उनका ध्यान हटाया जा सके। देखिए यार, मिनिस्ट्रीज एंड अथॉरिटीज तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन एक बात कहना चाहूंगी कि एज पेरेंट्स सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी की है तो वो है हमारी। घर से शुरू होती है ये बात। भाई साहब, रियल लाइफ को इतना इंटरेस्टिंग बनाएं, उनकी दुनिया में कुछ इस तरह से शामिल हो कि रियल लाइफ की याद जो है ना उन्हें कतई ना आए। अरे जरा अपने बचपन के दिनों को याद कर लो, जवाब जो है सारे वहां मिल ही जाएंगे। स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: अरे घर में सब टीवी के रिमोट को लेकर लड़ते रहते हैं, क्या करूं?
1: तो तू भी अपना एक रिमोट ले ले, कभी लड़ाई में पीछे नहीं हटना, अपना डिफेंस अपने हाथ में है।

यार आई एम प्रीटी श्योर आपके साथ भी जिंदगी में ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। मिर्ची अंशु यार ह्यूमन माइंड जो है ना ये बड़ी कमाल चीज है और इसके खुशी और गम के पैमाने भी बड़े ही कमाल हैं। इमेजिन करो जब तुम्हें पता चले कि तुम्हारे एग्जाम्स में मार्क्स कम आए, भाई साहब थोड़ा दुख होता है, लेकिन जब पता चले कि भाई तुम्हारे दोस्त के और भी ज्यादा कम आए, जरा देखो वो गम जो है खुशी में किस तरह से बदलती है। वैसे एक बात बता दूं, अगर आपके दोस्त ने पैसे भेज चुके हैं और आपने अब तक ट्रांसफर नहीं किए हैं तो आपकी खुशी जो है ना वो दुगने होने वाली है, क्योंकि आईपे एक्सचेंज में पैसा बड़ा कमाल बोल रहा है। Well, अगर आपसे ट्रांसफर करना चाहेंगे तो वन रियल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.38, साथ ही पाकिस्तानी रुपीज 76.16, बात करूं नेपाली रुपीज सो इट इज 42.17, बांग्लादेशी टका 33.77 एंड साथ ही लंकन रुपीज 90.73। तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां, लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय।

0: Energy.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. Na viva la murga.
2: हेलो,
3: कुड आई स्पीक टू मनीष प्लीज?
2: स्पीकिंग,
3: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके मनीष, आई नीड योर फेवर, आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी। मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट, कि पहले इंसान एप था, आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में, यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया, राइट।
2: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
3: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट। एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे। इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके?
2: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मतलब
3: तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था, तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे। तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर। आई एम श्योर कि सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था। बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी। तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए, कल का रख ले। मेरी बात सुनो, आई एम प्रोफेसर, मेरी बात सुनिए यार। आप हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है।
2: हेलो,
3: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी, मेरी बात सुनिए, मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने, उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार, मैं मुर्गा बनाया है, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार। मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार। इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है, फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी। डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस, मीट बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिएट वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल अंडर वन रूफ। तो मार्क योर कैलेंडर, 12th से 14th अक्टूबर, DECC दोहा, फूड कतर 2026, कनेक्ट, डिस्कवर और ग्रो।
5: GWM के मिर्ची रिचार्ज में DMIS स्कूल में बच्चों ने किया फन। लेट्स हियर इट फ्रॉम देम।
6: इट वाज द बेस्ट, आई लाइक द मैजिक शो।
7: मैजिक शो एंड यू?
6: इट वाज वेरी नाइस।
7: यू लाइक्ड इट?
6: यस।
7: वी शुड कम अगेन?
6: यस।
7: व्हाट्स योर नेम?
6: आयरा।
7: एंड योर्स?
6: अनविता।
7: व्हाट वाज द बेस्ट?
6: द मैजिक शो।
8: दिस रिचार्ज इज सो कूल, बेटर देन एनीथिंग एल्स।
9: Thank you, Mirchi. Thank you, GWM. We enjoyed. It's hot.
10: Подумайте, какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь.
4: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon. Coming soon. Mirchi Terminal Season 5, partnered by Papa John's.
11: Qatar, are you ready for the new pan pizza from Papa John's? Crispy garlic parmesan crust, Italian seasoning, 6 cheese blend and cheese edge to edge. The new standard of pan in Qatar at Papa John's. Order now.
4: Powered by iPay Wallet.
12: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ. No stress, self trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
13: Let's do the iPay.
4: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
14: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super specialty clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
15: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
16: With Baladna milk, laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
17: Baladna.
16: Taste that Qatar loves.
4: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.

देखो, अपनी तशरीफ घर पर ही टिकाए रखने के लिए मौसम का बहाना तो बहुत दे दिया, अब जरा कोई और एक्सक्यूज ढूंढ लिया जाए। मिर्ची अंशु यार, अक्टूबर का महीना आए फिर भी हम अपनी तशरीफ घर पर टिकाएं, ना यार, दोहा में तो ये नहीं हो सकता। वेदर जो है बिल्कुल बेहतर होते जा रहा है, आउटडोर सीजन पूरी तरह से अवेक होते जा रहा है। इस वक्त अगर मैं 10th ऑफ अक्टूबर की बात करूं तो लुसेल बुलेवार्ड पर होने वाला है 5K Dash, एज इट इज फाइनली बैक फॉर इट्स 3rd edition, एंड वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड। देखिए, जब 5 किलोमीटर भागने की बात होती है ना, तो सुनने में बड़ा आसान लगता है जब तक हम खुद ना दौड़ रहे हो। क्योंकि क्या है ना, पहला किलोमीटर तो नॉर्मली एक्साइटिंग ही लगता है, भाई साहब क्या गजब का मौसम है, मजा आ रहा है। दूसरे में वो सेल्फ मोटिवेशन टॉक शुरू होता है एक दूसरे को, हाजी वी हैव गॉट दिस, लेट्स डू दिस। तीसरे आने के बाद समझ में आता है कि भैया फिनिश लाइन है भी या नहीं, या हम जो है यहाँ से कल्टी मार लें। वेल, इतना ही कहना चाहूंगी, बहुत ही एक्साइटिंग होगा। अपने दोस्त यारों को तैयार कर लें, जो अपने साथ साथ आपको भी मोटिवेट करें कि भाई साहब शॉर्टकट लें तो ले कहाँ से। वैसे अक्टूबर इज गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग इन दोहा, बहुत सारे स्पोर्ट्स, कॉन्सर्ट्स, एग्जीबिशंस, आउटडोर एक्टिविटीज, सब कुछ लाइन अप है। इन सब के डिटेल्स मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। उसके लिए की काम करना है, टिक के बने रहना है, सुनते रहना है कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन। वेट, इट्स हॉट, एंजॉय।

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: खट खट।
6: Who that?
5: अकबर।
6: अकबर who?
5: अरे अकबर बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे।
6: खट खट। Who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: Six.
1: It's hot.
2: अरे यार कोई एसी चला दो यार।
3: हाँ सही है सही है।

0: यार मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि इस वीकेंड कहीं और क्यों, चले जरा स्पेस का ही दौरा कराएं।
1: मिर्ची अंशु
0: जी नाना और बावली ना हुई, मैं तो बस फ्यूचर को प्रेजेंट में लाने की कोशिश कर रही हूँ कि आने वाले दिनों में अगर कोई कहे कि चलो वीकेंड पे स्पेस चलते हैं तो ये जो बात है ना अब जोक ना रह जाएगी। बोले इतना बता दूं, अगर इस हफ्ते को देखने की कोशिश करें तो भाई दुनिया अगर इसे किसी तौर पे सेलिब्रेट कर रही है तो वो है वर्ल्ड स्पेस वीक। एंड 2026 का थीम है रॉकेट रेवोल्यूशन। 4th of October से लेकर 10th of October तक रॉकेट साइंस की दुनिया में जितने भी गजब कारनामे हुए हैं देश दुनिया में उसे बहुत अच्छी तरह से पहुंचाया जा रहा है। यार एक वक्त था जब स्पेस में जाना सिर्फ कुछ गवर्नमेंट एंड मैसिव नेशनल प्रोग्राम्स के बस की बात थी, लेकिन आज कमर्शियल कंपनीज, रियूसेबल रॉकेट्स, स्टार्टअप्स, यूनिवर्सिटीज एंड न जाने कितने देशों में स्पेस जो है एक्सेस का हिस्सा बनते जा रहा है। एंड आने वाले दिनों में ये कोई बड़ी बात नहीं होगी जब आप और हम यही डिसाइड करें कि भैया इस बार ये जो छुट्टी है ना स्पेस पे मना के आएंगे, लेकिन कौन से स्पेस पे जाना है ये बाद में डिसाइड करेंगे। चलिए इतना कहना चाहूंगी, रॉकेट रेवोल्यूशन में जितने भी एडवांसमेंट्स हुए हैं क्यों ना इस वीक अपने बच्चों को थोड़ा और उसके बारे में बताया जाए, क्या खुद का ही नॉलेज जरा सा इंप्रूव किया जाए। सर्च मारे कोई अच्छी बात लगे तो मुझे भी बताना। 5000186 पर विल गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची1 कतरिया मिर्ची अंशु, स्टूडियो टू मिर्ची बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: भूमि पेडनेकर, हमारे स्कूल में तो टॉयलेट में जाके टॉयलेट करते थे, आपके स्कूल में क्या करते थे?
2: In our school, toilet used to be the place जहाँ पे सब जाके romance करते थे। That used to be the spot in my school.
3: Toilet? हाँ। School था, कंजर खाना खुला हुआ था।
2: जो दोनों।
1: इसी कहानी से मुझे लगता है टॉयलेट एक प्रेम कथा का नाम रखा होगा। नहीं, आप सुन रहे थे अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: भट्ट
5: भट्ट, अरे भट्ट हूँ।
4: भट भट भट भट भट भट भट, बाइक बहुत आवाज करती है।
5: खट खट, हु दैट?
6: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: यार एक बात बताना, क्या तुम्हारी मुलाकात ऐसे किसी शख्स से कभी हुई है?
1: मिर्ची अंशु
0: यार देखो, यूं तो जिंदगी के सफर में ना जाने कितने लोग मिलते हैं। आए दिन हमारा आमना सामना किसी ना किसी से होता ही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे मिलने के बाद ये महसूस होता है कि यार अब तक तो हम ठीक थे, लेकिन अब जो है जरा ज्यादा अच्छे होने लगे। क्योंकि क्या है ना, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं। देखो, वो जिंदगी में आपसे कोई बड़े बड़े वादे नहीं करते, आपकी कोई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं करते, लेकिन बस दो पल की इनसे मुलाकात, वो दो लम्हों का साथ, और अपने आप ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो ही गया। और सच कहूं, अगर जिंदगी में ऐसा कोई खास है ना, तो भाई तुम्हारी जिंदगी में सुकून जरूर है ना, उसे ये बात बताना जरूर, क्योंकि क्यों हर बात कल के लिए छोड़ी जाए। वो कहते हैं ना कि जब कुछ लोग मिले तो दिल को आराम हो गया, बिना कहे जैसे हर दर्द का नाम खोसा गया, रिश्ता क्या था उनसे ये आज तक मालूम नहीं, लेकिन बस वो साथ थे और हर लम्हा जैसे खास हो गया। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। अच्छा।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: सर, कार में बच्चे उल्टी कर देते हैं, क्या करूं?
1: अरे अरे अरे, सिंपल है ना, तुम एक काम करो, गाड़ी को रिवर्स में चलाओ। कार उल्टी चलेगी तो बच्चे भी सीधी करेंगे।

0: कुछ शो सिर्फ शोज नहीं होते, वो पूरी जनरेशन की मेमोरी बन जाते हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: और करण जौहर के अल्टीमेट काउच पे एकदम मस्त वाली कॉफी पीते हुए जो सेलिब्रिटी इंटरेक्शंस हुए हैं इन द शो कॉफी विद करण इज वन ऑफ देम। 2004 में शुरू हुआ था ये शो और देखते ही देखते 8 सीजन्स, 22 साल और 161 एपिसोड्स का सफर तय कर गया, जहां करण जौहर के काउच पर सेलिब्रिटीज आए, कॉफी के साथ कन्फेशंस हुए, रैपिड फायर राउंड्स में सीक्रेट्स निकले और कुछ ऐसे मोमेंट्स मिले जो लिटरली पॉप कल्चर का हिस्सा बन गए। और अब जब करण जौहर ने अनाउंस कर दिया कि भाई ये सीजन 8 इज गोइंग टू बी द लास्ट ब्रू ऑफ द शो, तो थोड़ा अजीब तो लग रहा है, क्योंकि यार हमारी जनरेशन ने ना इस शो पे सिर्फ सेलिब्रिटीज को कॉफी पे बात करते हुए नहीं देखा, हमने उनकी पर्सनालिटीज, उनकी फ्रेंडशिप्स, कंट्रोवर्सीज और वल्नरेबिलिटीज को भी उस काउच पर अनफोल्ड होते देखा है। 22 सालों तक कॉफी विद करण ने बॉलीवुड को सिर्फ इंटरव्यू नहीं किया, उस कहानी का एक हिस्सा बन गया। और शायद इसीलिए इसका लास्ट एपिसोड सिर्फ एक शो का फिनाले नहीं, एक एरा का गुड बाय लगेगा। वैसे ऑलरेडी इस शो की शूटिंग शुरू हो चुकी है एंड 14th of October से इट इज गोना स्ट्रीम ऑन जियो हॉटस्टार, जब करण जौहर की ये वाली लेगेसी विल कम टू एन एंड। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Gabana. Burga, burga. Na
1: vidva la burga. Milci, burga. हेलो,
2: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोल रहे
2: हैं। राज जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
2: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
1: लेकिन है किस लिए ये तो बताइए, किस लिए, कहाँ पे लगाना
2: नहीं
1: है?
2: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा। हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ।
1: पूरी
2: नहीं, नहीं पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम है आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
1: तो बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास?
2: नहीं नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना?
1: ये कॉपी मुझे भी भेजना
2: राज जी। एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
1: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेजना।
2: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। आप थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहे तो?
1: हाँ बिल्कुल बताइए।
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वांटेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया, आपका अब आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
1: कुकड़ों को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।
4: Подумайте, какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь.
3: Mirchi Terminal Season 5 coming soon. Mirchi Terminal Season 5, partnered by Papa John's.
5: Qatar, are you ready for the new pan pizza from Papa John's? Crispy garlic parmesan crust, Italian seasoning, 6 cheese blend and cheese edge to edge. The new standard of pan in Qatar at Papa John's. Order now.
3: Powered by iPay Wallet.
6: अपनो को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ. No stress, self trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही. Let's do the
3: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
6: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super speciality clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
7: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
8: With Baladna milk, laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
9: Baladna.
8: Taste that Qatar loves.
3: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.
10: Cut, cut.
11: Who that?
10: Zahir.
11: Zahir. Zahir who?
10: Zahir si baat hai. Main hoon. Aur koi nahi.
11: Cut, cut. Who that?
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। ये तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है यार, सलमान खान की अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म मातृभूमि के लिए, क्योंकि फाइनली इसको गवर्नमेंट ने क्लियरेंस दे दी है आफ्टर रिविजन्स। सो बेसिकली इस फिल्म में इंडो चाइना के रिलेशंस को लेकर गवर्नमेंट को कुछ आपत्ति थी, बट अब जब एक नया वर्जन सबमिट किया गया तो उसमें इंडो चाइना के रिलेशंस को पॉजिटिवली दिखाया गया, जिसको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। एंड नाउ द मेकर्स आर आइंग कि ये नवंबर 13th तक इस फिल्म को रिलीज कर दे। ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन मिलते ही आपको जरूर बताऊंगी। YRF की अपकमिंग फिल्म मू पापा की बात करना चाहती हूँ। आई जस्ट होप कि यही प्रोनंसिएशन हो इस फिल्म का, क्योंकि MUPAPA है। अब आई डोंट नो, एनीवे इस मूवी में आयुष्मान खुराना तो थे, बट उनके साथ अब मच लव्ड सीरीज बंदिश बैंडिट्स फेम एक्टर श्रेया चौधरी भी स्टार कास्ट को ज्वाइन कर चुकी हैं। बाकी फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं काला पानी फेम समीर सक्सेना। बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। दृश्यम 3 वर्ल्ड वाइड ओपनिंग वीकेंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस तो ताबड़तोड़ करती गई और 266 करोड़ ग्लोबली पहुंच गई इन जस्ट 3 डेज। इसी के साथ विजय सलगांवकर की थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ दृश्यम इमर्जेस एज अ ब्लॉकबस्टर। इंडिया की बात करें तो अराउंड 208 करोड़ की कमाई की है फिल्म ने इन 3 डेज। वेल, अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: नहीं खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: नॉटी माइंड, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं तो मिर्ची फिल्म ची गेम खेलने की बात कर रही हूँ यार। सो बेसिकली द ड्रिल इज, आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे डीएम में अपना नंबर भेजना होता है, जिसके बाद मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत करती हूँ। एंड इसके थ्रू हमें पता चलता है कि भाई आप कितने बड़े वाले फिल्म ची हैं। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे कौन है?
3: मैं प्रथा बोल रही हूँ।
0: हाय प्रथा, कैसे हो आप?
3: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं बिल्कुल बढ़िया। तो क्या आप आज के मिर्ची फिल्मची गेम की शुरुआत करना चाहेंगी?
3: हाँ हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ।
0: ओके, लेट्स बिगिन। रवीना टंडन पीली साड़ी में बारिश वाला डांस किस फिल्म में करती हैं?
3: मोहरा।
0: मोहरा में तू चीज बड़ी है मस्त मस्त कौन करता है?
3: अक्षय कुमार। एक और परेश रावल भी रहता है।
0: अक्षय कुमार की फिल्म जिसमें उनको चाइना के एक वॉरियर का री इंकारनेशन समझते हैं?
3: चांदनी चौक टू चाइना।
0: चांदनी चौक टू चाइना में जुड़वा कैरेक्टर किसका है?
3: दीपिका पादुकोण।
0: दीपिका पादुकोण की फिल्म जिसमें वो अपने ऑनर के लिए खुद को जौहर कर देती हैं?
3: पद्मावत।
0: पद्मावत में राजपूत राजा कौन है?
3: शाहिद कपूर।
0: शाहिद कपूर की फिल्म जिसमें वो एक अनलकी आर्किटेक्ट हैं, जो फिल्म की हीरोइन को अपना लकी चांस समझते हैं?
3: किस्मत कनेक्शन।
0: किस्मत कनेक्शन की फीमेल लीड?
3: विद्या बालन।
0: विद्या बालन की फिल्म जिसमें वो अमिताभ बच्चन की मम्मी बनी है?
3: पा।
0: पा में असली पापा कौन है?
3: अभिषेक बच्चन।
0: अभिषेक बच्चन की फिल्म जिसमें पेटीकोट बाबा कौवा बिरयानी खाते हैं?
3: नहीं पता।
0: कोई बात नहीं, बट यहाँ तक बहुत मस्त गेम खेला है यार आपने।
3: थैंक यू। आंसर क्या है लेकिन?
0: अब वो आपको बता दिया तो आगे का गेम कैसे कंटिन्यू होगा, बट कोई नहीं, आपको ये टैग तो दे दूं।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो बाबू मोशा इस फिल्मची गेम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देन यू ऑलरेडी नो द ड्रिल। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
4: Meethi Mirchi, presented by Absolute Barbecues. From savory to sweet, experience the ultimate flavors at Absolute Barbecues.

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है, फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी। डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस, मीट बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिएट वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल अंडर वन रूफ। तो मार्क योर कैलेंडर, 12th से 14th अक्टूबर, DECC दोहा, फूड कतर 2026। कनेक्ट, डिस्कवर और ग्रो।
6: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, मैं तो मिर्ची फिल्म से गेम खेलने की बात कर रही हूँ यार। आपके दिमाग के घोड़े किधर किधर दौड़े, उनको लगाम लगाइए, वापस लाइए। बेसिकली द ड्रिल इज, आपको मेरे इंस्टा के डीएम में अपना नंबर भेजना होता है, फिर मैं आपको कॉल करती हूँ और इस गेम की शुरुआत करती हूँ। और आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे थी प्रिथा, बट शी गॉट स्टक एट अ पॉइंट, और उसके आगे का गेम खेलने के लिए हमारे साथ हैं पुष्पाल जी। तो सर चलिए आपके लिए मैं सवाल फिर से रिपीट कर देती हूँ। अभिषेक बच्चन की फिल्म जिसमें पेटीकोट बाबा कौवा बिरयानी खाते हैं।
3: रन।
0: रन की फीमेल लीड
3: भूमिका चावला।
0: भूमिका चावला की फिल्म जिसमें उनसे हीरो को ऑब्सेसिव प्यार हो जाता है।
3: या तेरे नाम।
0: तेरे नाम में राधे कौन है।
3: सलमान खान।
0: सलमान खान की फिल्म जिसमें वो टांगों के बीच में टॉवल डाल के डांस करते हैं।
3: मुझसे शादी करोगी।
0: मुझसे शादी करोगी में सलमान को किससे शादी करनी है।
3: प्रियंका चोपड़ा।
0: प्रियंका चोपड़ा की फिल्म जिसमें वो मॉडल बनी है।
3: फैशन। फैशन।
0: फैशन में एक डायलॉग है, ये कौन करता है।
3: कंगना रनौत।
0: कंगना रनौत की फिल्म जिसमें उनका पति अदरक के जैसे हर जगह से बढ़ता रह रहा है।
3: तनु वेट्स मनु रिटर्न्स
0: में उनका पति कौन है।
3: आर माधवन।
0: आर माधवन की फिल्म जिसमें वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है लेकिन उनको फोटोग्राफी पसंद है।
3: थ्री इडियट्स।
0: थ्री इडियट्स में प्रिंसिपल की बेटी कौन है।
3: करीना कपूर।
0: यस, करीना कपूर की फिल्म जिसमें वो अपनी फेवरेट है।
3: शाहिद कपूर के साथ है मूवी।
0: हाँ जी। इसलिए आपको ये टैग तो जरूर देना है।
1: मिर्ची फिल्म जी।
0: अब देखो, इस गेम को सुनने के बाद अगर आपके अंदर का फिल्मी कीड़ा फोमो में जा रहा है, देन वरी नॉट, ये गेम कल फिर से वापस आएगा। राइट हियर ऑन मिर्ची, मैं हूँ आपके साथ श्रुति। इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अर्शद वारसे, आपका एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम चल रहा है, चाहे ओटीटी की बात हो या थिएटर की। प्रीतम और पेड्रो में आपने राजकुमार हिरानी से अच्छे खासे पैसे मांगे होंगे, नहीं?
3: पैसे तो मैंने दिए इनको काम करने के लिए।
4: वो पिक्चर चलने पे डिपेंड करता है।
5: पिक्चर पिट गई तो इससे बुरा साल नहीं होगा।
6: चार फिल्में, उनकी दो, एक सीरीज, एक फिल्म। मैं ही हूँ जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हूँ।
2: राजकुमार हिरानी में एवरीवन बी एज अनएम्प्लॉयड एज यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स ऑन।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
7: Looking to grow your business in Qatar's booming hospitality and food industry? Then don't miss Hospitality Qatar 2026, the region's leading platform for hospitality, food service and tourism. Meet key decision makers, investors and industry professionals. Showcase your latest products and innovations and unlock new business opportunities through dedicated B2B matchmaking. Join the 11th edition of Hospitality Qatar from 12th to 14th October at DECC. Hospitality Qatar 2026, where business meets opportunity.
8: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
9: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
10: बहुत कुछ होगा।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6
13: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: लंच में रोज क्या ले जाऊं, समझ नहीं आता।
1: मेरी बात मानिए, तो एक बढ़िया सा टिफिन बॉक्स लीजिए और वही लेकर जाइए ना लंच में। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है ये।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: अच्छी चीजों की डिस्कशन काफी ज्यादा जरूरी होती है।
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: स्पेसिफिकली बात जब अच्छी फिल्मों की हो बाबू मोशाय, देखो हमारे हिंदी सिनेमा की तरफ से बहुत सारी फिल्में आती हैं, बट नॉट एवरी फिल्म गेट्स द ड्यू जो उसको मिलना चाहिए फॉर द थिंग्स दैट द मूवी हैज ब्रॉट इन आवर लाइव्स। बट थैंकफुली आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैंने सोचा कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के तरफ से कुछ हाईली अंडररेटेड मूवीज की डिस्कशन करूं। हाँ, मैंने ये पहले भी किया है, बट आज की लिस्ट एकदम ताजा है ब्रो। लिस्ट में सबसे पहले बात करेंगे मैं, मेरी पत्नी और वो के बारे में। नंबर दो पे लव शव ते चिकन खुराना, नंबर तीन पे रेनकोट, नंबर चार पे अक्टूबर और नंबर पांच पे खोया खोया चांद। तो चलो सबसे पहले मैं, मेरी पत्नी और वो की डिस्कशन शुरू करते हैं। ये फिल्म साल 2005 में आई थी जिसे चंदन अरोड़ा ने डायरेक्ट किया था। बाकी इस मूवी में राजपाल यादव, के मेनन और ऋतुपर्णा सेन गुप्ता जो है वो लीड रोल्स में थे। देखो इनसिक्योरिटी एक बहुत ही मेजर फीलिंग है, मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, और ये जब किसी इंसान के अंदर घर कर जाती है तो उसको आसपास की हर चीज बुरी ही लगने लगती है। और कुछ यही इस मूवी का कॉन्टेक्स्ट है। छोटे बाबू यानी कि मिथिलेश प्लेड बाय राजपाल यादव, वो अपनी चीजों को लेके इनसिक्योर हैं, बट वो ये सारी चीजें अपने ब्यूटिफुल वाइफ वीना के अंदर ढूंढने लगते हैं। उनको लगता है कि वो उनके ऊपर चीट कर रही है एंड ऑल दैट जैज, जिसके बाद उनके रिलेशनशिप में बहुत उथल पुथल होती है। अब आगे की कहानी मैं यहीं बता दूंगी तो ये तो गलत हो जाएगा ना यार फिल्म के साथ। तो आप अपनी वॉच लिस्ट में इस फिल्म को जरूर डालना, इट इज अ ब्यूटिफुल वॉच आई मस्ट टेल यू। और बाकी की फिल्मों के डिस्कशन के लिए सुनते रहो मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी जिसका नाम है श्रुति। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
2: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: Profit Milchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na
1: virpa, burka. Milchi, burka. Hello.
2: Mr. Gagan, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको। आपका अकाउंट नंबर 337103 राइट?
1: हाँ।
2: वन सेकेंड सर। सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000।
1: हाँ।
2: वन सेकेंड सर, आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
1: नहीं तो।
2: आपने नहीं किया है?
1: नहीं।
2: तो फिर किसने किया है सर ये? सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
1: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
2: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए कम से कम। मुझे पता चला, मुझे ऐसी पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है। आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाला, किसने निकाला, किस पे शक है आपको?
1: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना किसी को चेक दिया है, ना मैंने एटीएम यूज किया है।
2: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
1: मैंने 2 पैसे निकाले।
2: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
1: मैंने कोई पैसा नहीं निकाला, ना मैं किसी को चेक दिया। एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल? ओके
2: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको। अब मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
1: वो जो नोट लेके जा रहा है उस पर मेरा नाम लिखा है।
2: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल दिए हैं। मुझे नहीं पता आप
1: ठीक बोल रहे हो, वहीं आके बजाऊंगा।
2: आप मुझे क्या बताएं? आप बदतमीजी से बात मत करिए। सर मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए, बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी। स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं सर। ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे। 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है।
1: क्या
2: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
1: किससे बात करनी है, किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
3: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, बात आपसे ही करनी थी। और बैंक हमारा मिर्ची का है, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है। 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं आपके अकाउंट में, 1,42,000 रुपए हैं। और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था।
2: लेकिन सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है। नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: खट खट
6: पुरेर
5: बनता
6: बनता हूँ।
5: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को।
6: खट खट पुरेर
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: ठीक वैसे ही हर अच्छी सजी धजी फिल्म हमेशा हिट नहीं होती, अच्छी नहीं लगती। इसलिए आज पांच का पंच के लिस्ट के थ्रू मैं कुछ अंडररेटेड फिल्मों की बात कर रही हूँ फ्रॉम आर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। हाँ जी, पहले भी ये डिस्कशन चल चुकी है बट आज की लिस्ट एकदम तरोताजा फ्रेश है। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट मैं, मेरी पत्नी और वो। अब नंबर दो पे बात करते हैं लव शव ते चिकन खुराना, जो साल 2012 में आई थी, डायरेक्टेड बाय समीर शर्मा। देखो ये फिल्म ना 3 करोड़ के बजट पे बनी थी और इसने कलेक्ट किए 10 करोड़ से भी ज्यादा। इस फिल्म में कुणाल कपूर, हुमा कुरैशी, विनोद नागपाल और राजेश शर्मा जैसे लव्ड एक्टर्स हैं। बाकी एक फैमिली की प्राइड होती है राइट, जिसपे अगर आंच आए तो इंसान एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। कुछ ऐसा ही है इस मूवी का कॉन्टेक्स्ट, जहां अपने फैमिली को क्राइसिस से बचाने के लिए एक पर्टिकुलर रेसिपी की तलाश होती है, वो सीखने की कोशिश होती है एंड द मूवी रिवॉल्व्स अराउंड द सेम। इन शॉर्ट इट इज अ फुल ऑन एंटरटेनिंग कॉमेडी। मूविंग ऑन फिल्म रेनकोट की बात करते हैं ऑन नंबर 3, जो रिलीज हुई थी इन 2004, डायरेक्टेड बाय ऋतुपर्णो घोष। बाकी ये एक अडेप्टेशन है ऑफ द नॉवल द गिफ्ट ऑफ द मागी। एंड वो वाली फीलिंग आपको पता है, मान लो आप अपने एक्स से मिलते हो, आप नॉस्टैल्जिया में चले जाते हो, बहुत सारी मेमोरीज जो आपकी पास्ट की रही हैं आप उसके बारे में बातें करते हो, बट एट द सेम टाइम आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है एक्चुअल वाली, हाँ वो आपके एक्स को ना पता चले, आप बहुत सारे झूठ बुनने लगते हो, उसका जाल बनाते हो। कुछ यही है इस फिल्म की कहानी भी, जिसमें ऐश्वर्या राय ने नीरजा का रोल प्ले किया है और अजय देवगन ने मनोज का। भाई साहब, एक ऑफ बीट फिल्म जिसमें इन दोनों का किलर परफॉर्मेंस है, डेफिनेटली अ ट्रीट टू वॉच। बाकी और दो मूवीज की बात बाकी है बाबू मोशाय, लेकिन ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल। टिल देन यू एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी, जिसका नाम है श्रुति।

0: अंडररेटेड होने में एक अलग ही क्लास है।
1: श्रुति श्रुति
0: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ। अब देखो यार, बाबू मोशा है जिस लेवल पे हिंदी सिनेमा में हर दूसरे फ्राइडे हमें कोई ना कोई नई फिल्म परोसी जाती है, उसमें से कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जिनको बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास रिकग्निशन तो नहीं मिलता, बट हाँ उन मूवीज ने हमारे दिल में एक स्पेशल जगह बना ली होती है। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी ही अंडररेटेड मूवीज की बात कर रही हूँ। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट मैं मेरी पत्नी और वो, नंबर दो पे हमने लव शब्द चिकन खुराना की बात की, नंबर तीन पे रेनकोट की बात हुई, अब नंबर चार पे बात करते हैं फिल्म अक्टूबर के बारे में जो साल 2018 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय सुजीत सरकार। बाकी इस फिल्म में वरुण धवन और बनीता संधु जो हैं वो लीड रोल्स में थे। एंड दिस इज अ कमिंग ऑफ एज ड्रामा फिल्म जिसमें बहुत ही खूबसूरती से रिस्ट्रेन किया गया है स्टोरी टेलिंग को, बिना किसी एरर के दो प्राइमरी स्पेसेस को। एंड माइंड यू, ये दो प्राइमरी स्पेसेस जो हैं वो हमारी जिंदगी के दो मेजर कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं, उसको एक बहुत ही ब्यूटीफुल कहानी में पिरोया गया है। अ डेफिनेट वॉच फॉर श्योर। मूविंग ऑन, नंबर पांच पे बात करते हैं फिल्म खोया खोया चांद के बारे में जो साल 2007 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय सुधीर मिश्रा, जिसमें सोहा अली खान, शाइनी आहूजा, विनय पाठक और रजत कपूर जैसे अमेजिंग एक्टर्स थे। बाकी यहाँ कहानी है एक रिबेलियस यंग राइटर की जो बॉम्बे आता है अपना लक आजमाने के लिए इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री, बट देयर ही फॉल्स इन लव विद अ स्टारलेट एंड अपने आप को उस प्यार में कहीं खो देता है। फिर अपने आप को खोने के बाद जब वो एक्स्ट्रा जिससे इसको प्यार होता है वो जब ऊंचाइयां छूने लगती है, तब इन दोनों के लाइफ में जो बवाल मचता है इज व्हाट खोया खोया चांद टॉक्स अबाउट। अगर नहीं देखी है तो प्लीज इस मूवी को जरूर देख लेना। मीनवाइल अगर ऐसी ही कोई अंडररेटेड फिल्म आपके दिमाग में है देन प्लीज मेरे लिस्ट में उसको ऐड करो यार, MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से। मैं आपको फेसबुक या फिर इंस्टा पे मिलूंगी। मीनवाइल एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी जिसका नाम है श्रुति।
1: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स at Absolute Barbecues.

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: खट खट।
6: अगरकर।
5: अगरकर हु?
6: अगर करना है तो कर, वरना छोड़ दे।
5: खट खट, हु दैट?
4: Only on 89.6 Mirchi 1.
7: Mirchi, it's hot.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। ये तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है यार सलमान खान की अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म मातृभूमि के लिए, क्योंकि फाइनली इसको गवर्नमेंट ने क्लियरेंस दे दी है आफ्टर रिविजन्स। सो बेसिकली इस फिल्म में इंडो चाइना के रिलेशंस को लेकर गवर्नमेंट को कुछ आपत्ति थी, बट अब जब एक नया वर्जन सबमिट किया गया तो उसमें इंडो चाइना के रिलेशंस को पॉजिटिवली दिखाया गया, जिसको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। एंड नाउ द मेकर्स आर आइंग कि ये नवंबर 13th तक इस फिल्म को रिलीज कर दे। ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन मिलते ही आपको जरूर बताऊंगी। YRF की अपकमिंग फिल्म मू पापा की बात करना चाहती हूँ। आई जस्ट होप कि यही प्रोनंसिएशन हो इस फिल्म का, क्योंकि MUPAPA है। अब आई डोंट नो, एनीवे इस मूवी में आयुष्मान खुराना तो थे, बट उनके साथ अब मच लव्ड सीरीज बंदिश बैंडिट्स फेम एक्टर श्रेया चौधरी भी स्टार कास्ट को ज्वाइन कर चुकी हैं। बाकी फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं काला पानी फेम समीर सक्सेना। बाकी की डीट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। दृश्यम 3 वर्ल्ड वाइड ओपनिंग वीकेंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस तो ताबड़तोड़ करती गई और 266 करोड़ ग्लोबली पहुंच गई इन जस्ट 3 डेज। इसी के साथ विजय सलगांवकर की थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ दृश्यम इमर्जेस एज अ ब्लॉकबस्टर। इंडिया की बात करें तो अराउंड 208 करोड़ की कमाई की है फिल्म ने इन 3 डेज। वेल, अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
0: अरे भाई इतनी भागदौड़ में मैं अपने लिए वक्त कैसे निकालूं?
1: तो यार भागदौड़ में वक्त निकाल के देखना ना मुश्किल होता है। तू एक काम कर, घड़ी हाथ पे पहन, रिस्ट वॉच, जब वक्त देखना हुआ हाथ घुमा के देख लिया, सिंपल।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: इस फिल्म के नाम की वजह से शाहिद कपूर की डेब्यू मूवी का नाम चेंज करना पड़ा था। दिल विल प्यार व्यार मूवी का नाम है यार, जिसके बारे में आज हो रही है चर्चा। रिलीज इन द ईयर 2002, दिल विल प्यार व्यार को डायरेक्ट किया था अनंत महादेवन ने, जिसमें आर माधवन, जिमी शेरगिल, नम्रता शिरोडकर, सोनाली कुलकर्णी, हर्षिता भट्ट और राकेश बापट जैसे अमेजिंग स्टार्स थे। सो इस फिल्म का पर्टिकुलर नाम जो है दिल विल प्यार व्यार, उसी के अराउंड शाहिद कपूर की डेब्यू फिल्म इश्क विश्क रिलीज होने वाली थी। लेकिन जब ये मूवी अनाउंस हुई तो इश्क विश्क के डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स ने डिसाइड किया कि भाई हम अपने नाम को चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो फिल्म पहले इश्क विश्क प्यार व्यार के नाम से रिलीज होने वाली थी एंड लेटर इट वॉज टर्न्ड इनटू जस्ट इश्क विश्क। तभी मैं कहती हूँ बाबू मोशाय कि बड़े पर्दे पे फिल्म जो देखने जाते हैं आप, उसके पीछे बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां मिलकर उतनी बड़ी फिल्म बनाती हैं, जो ढूंढ कर मैं आप तक लेकर आती हूँ। तो अपनी फेवरेट फिल्म का नाम मुझे बताइए, आई डू द होमवर्क फॉर यू। MIRCHISHRUTI यानी मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana. Rambala. Burka, burka. La virpa, la burka.
1: Mirchi, burka. Hello.
2: Could I speak to Manish, please?
1: Speaking.
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से.
1: ओके
2: मनीष, आई नीड योर फेवर, आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी. मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को. मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, कि पहले इंसान एप था. आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में. यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया. राइट,
1: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
2: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ. 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे. इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके.
1: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा
2: हूँ. वही तो, ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था. तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे. तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर. आई एम श्योर कि सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था. बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी. तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए. कल का रख ले. मेरी बात सुनो. आई एम प्रोफेसर. मेरी बात सुनिए यार. आप हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है.
1: हेलो,
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी. मेरी बात सुनिए. मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने, उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार. मैं मुर्गा बनाया है, तुम रेडियो मिर्ची पे हो. आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार. मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने जो लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार. इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
3: Hi, this is Anuradha Podwal.
4: कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला.
5: This is Vinod Rathod and we are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
4: भूल से पर्दा कीजिए.
6: Hi, I am Kajiva Rahman. We are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
7: Experience the magic of their voice on 30th October 2026 at Aspire Zone Ladies Sports Hall, Doha, Qatar, 6:30 PM onwards. In association with Indomie Noodles, Lulu Hypermarket, iPay and Green Printers, online ticketing partners, qtickets.com, Platinum List, Virgin Megastore and S-City. For more information, contact 6004369, an event by Rami Productions International.
8: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है. मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
9: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा.
8: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
10: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा.
8: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो. भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी. ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है. गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट.
7: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ. कॉल नाउ 7070-7687.

0: मैं तो दूसरी कैटेगरी वाली होके बड़ी खुश हूँ यार।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं।
0: मिर्ची पे ट्यून नो आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति, और आज बात कर रही हूँ लॉन्ग वीकेंड के मद्देनजर पाए जाने वाले दो कैटेगरीज ऑफ लोगों के बारे में, जिसमें फर्स्ट आर द पीपल जो अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं फॉर दैट मैटर, तो कैलेंडर आते ही ना ये पूरे साल के जितने भी महीने में लॉन्ग वीकेंड आ रहे हैं वो सब टिकमा कर लेते हैं और उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग शुरू कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो मान लो दिल्ली में रह रहे हैं तो लॉन्ग वीकेंड के एक दिन पहले से ही ब्रो हमने यहाँ पे बुकिंग कर लिया, चल ऋषिकेश घूम के आ जाते हैं, अरे चलना हिमाचल थोड़ा कसौल चल लेते हैं यार और क्या ही करना है, और फिर इस लॉन्ग वीकेंड में मेजरली ये बस ट्रैवल ही करते रह जाते हैं। तो वादियों में कम ये सड़कों पे अपने लॉन्ग वीकेंड को ज्यादा व्यतीत करते हैं, लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है वो बड़ी स्मार्ट प्रजाति है, क्योंकि इन लोगों के लिए लॉन्ग वीकेंड का मतलब भाई सैटरडे संडे ऐसे ही कम पड़ता था, एक एक्स्ट्रा दिन मिल गया है आराम करने के लिए। ये एक तरीके से 3 दिनों के लिए हाइबरनेशन पे चले जाते हैं, बस इनका 3 काम होता है, ईट स्लीप रिपीट। ओ ऑफ कोर्स बीच में हल्का वल्का होना पड़ता है, अब उसको मेंशन थोड़ी करूंगी मैं, बट यू अंडरस्टैंड देम वेल। वैसे मैं इनके बारे में इतने अच्छे से इसलिए जानती हूं बिकॉज लाइक आई सेड आई बिलोंग टू दिस सेकंड कैटेगरी एंड आई एम रियली रियली हैप्पी बीइंग देयर। आप अपनी कैटेगरी बताने के लिए मुझसे मिर्ची श्रुति के नाम से फेसबुक या इंस्टा पे जरूर कनेक्ट करना। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: यार हमें 90s में टैटू बनवाने के लिए टैटू पार्लर जाने की जरूरत नहीं होती थी।
1: 90 ml With Shruti.
0: हम तो बस किराने की दुकान पे जाके 2 रुपए का च्युइंगम खरीदते थे और काम हो जाता था, क्योंकि च्युइंगम के रैपर को खोलते ही भाई साहब उसके अंदर कौन सा टैटू निकला है, बस यही सबसे पहला सवाल दिमाग में दौड़ता था। और फिर शुरू होती थी असली इंजीनियरिंग। टैटू को पहले स्किन पे रखो, थोड़ा पानी लगाओ, पानी ना मिले तो थूक लगाओ, हल्का सा प्रेस करो और बड़े प्यार से पेपर को हटा दो। और अगर पूरा डिजाइन एकदम क्लीन ट्रांसफर हो गया तो भैया हम तो खुद को टैटू आर्टिस्ट ही समझने लगते थे। फिर वो टैटू लेकर स्कूल जाना, फ्रेंड्स को दिखाना और अगले 2-3 दिन तक उसको बचाने की पूरी कोशिश करना। मतलब पहले दिन एकदम कूल वाली फीलिंग, दूसरे दिन थोड़ा फेडेड, फिर तीसरे दिन ब्लू पिंक सा अजीब सा दाग, और कुछ दिन के बाद तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने पेन से हाथ पे कुछ लिख दिया है और वो बारिश में भीग गया है। और फिर होता था मम्मी का सफाई मिशन, अरे ये क्या लगा ली हो हाथ पे, स्कूल में क्या बोलेगी। जहाँ स्कूल में और बुरा हाल कर दिया जाता था, मतलब टीचर की नजर पड़ गई तो सीधा व्हाट इज इन योर हैंड, रिमूव इट। और टीचर को भी कैसे समझाएं कि मैम मैं तो रिमूव करने की पूरी कोशिश कर चुकी हूँ लेकिन ये टैटू मुझसे ज्यादा कमिटेड है। साबुन से घिसो, टॉवल से घिसो और कभी कभी नेल से हल्का हल्का स्क्रैच कर लो। आज भले ही टेम्परेरी टैटूज 200-300 के एक्सेसरीज बन गए हैं, केयरफुली डिजाइंड होते हैं, इंस्टाग्राम वर्दी होते हैं, लेकिन हम 90s किड्स के लिए तो भाई च्युइंगम के रैपर का बोनस हुआ करता था वो टैटू। क्या सिंपल जमाना था यार, च्युइंगम के अंदर छोटी सी चाइल्डहुड मेमोरी फ्री। वैसे आपकी भी कुछ अगर ये वाली टैटू मेमोरीज हैं तो शेयर जरूर करना। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज। फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची इट्स हॉट। अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
5: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
4: Powered by iPay Wallet.
6: अपनों को भेजिए पैसे with best rates iPay Wallet के साथ. No stress, सिर्फ trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
7: Let's do the iPay.
4: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
8: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super speciality clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
9: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
10: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
11: Baladna.
10: Taste that Qatar loves.
4: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.
12: Khat khat.
13: Kaun hai?
12: Dave.
13: Dave kaun?
12: The way you love me. I hai mar jawa.
13: Khat khat. Who that?
14: Only on 89.6 Mirchi 1.
15: Mirchi.
14: It's hot.

0: डिटेक्टिव गिरी करनी है तो जरा फिल्मी अंदाज में ही कर लो।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अब मैं ये नहीं बोल रही कि आप ना कैमरे के सामने खड़े होके कुछ तो गड़बड़ है दया, दरवाजा तोड़ दो दया, ये सब करो यार। मैं तो अपने अंदर के फिल्मी पने को जगाने की बात कर रही हूँ, क्योंकि इस गेम में मैं आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स देती हूँ जिसके जरिए आपको सही फिल्म गेस करनी होती है। एंड दैट्स हाउ यू बिकम द फिल्मी डिटेक्टिव ऑफ द डे ऑन माय शो। तो हमारे साथ फिलहाल टेलीफोन लाइन पे है आयुषी फ्रॉम दिल्ली। आर यू रेडी?
3: हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट।
0: ओके, आपका पहला प्रॉम्प्ट है ऑब्सेसिव लवर स्टॉकिंग
3: कबीर सिंह।
0: नहीं, पूरा तो सुन लो यार।
3: ओके ओके चलो।
0: ऑब्सेसिव लवर स्टॉकिंग किरण।
3: शाहरुख खान सनी देओल की मूवी है वो।
0: यस इट इज।
3: डर डर डर मूवी का नाम डर है, DRR।
0: यस इट इज। सेकेंड प्रॉम्प्ट, टू ब्रदर्स मर्डर्ड री इनकारनेशन माँ का बदला
3: करण अर्जुन।
0: यस। स्मॉल टाउन टैक्सी ड्राइवर क्लास डिफरेंस लव सीक्रेट मैरिज सेपरेशन
3: राजा हिंदुस्तानी।
0: यस इट इज। आपका फोर्थ प्रॉम्प्ट है डांस ट्रूप लव ट्रायंगल ले गई
3: दिल तो पागल है।
0: यस इट इज। आपकी एक्साइटमेंट कितनी अमेजिंग है यार, इट इज इन्फेक्शियस, आई लव इट। ओके नेक्स्ट, कूली अमीर लड़की डिस्गाइज कॉमेडी।
3: अगर पुरानी वाली है तो कूली नंबर वन।
0: यस बिल्कुल सही पकड़े हैं। फ्रेंड्स कॉलेज रेवोल्यूशन पेट्रियोटिज्म
3: रंगवसंती।
0: यस इट इज। द नेक्स्ट वन इज वेडिंग प्लानर कंपनी फ्रेंड्स
3: शादी मुबारक। हाँ शादी मुबारक।
0: शादी मुबारक इसका नाम पहले होने वाला था, बाद में कुछ और हो गया।
3: बैंड बाजा मुबारक।
0: यस इट इज। ओके दिस वन इज द लास्ट वन, ठीक है।
3: ओके ओके।
0: मेमोरी रिवेंज टैटूज मर्डर
3: गजनी।
0: यस। और आप बिल्कुल गजनी की ऑपोजिट है। हाँ, सारे प्रॉम्प्ट्स एकदम मस्त गेस किए आपने।
3: थैंक यू सो मच।
0: तो इसी के साथ आपको ये टैग जरूर देना चाहूंगी,
1: फिल्मी डिटेक्टिव।
0: इट वॉज लवली प्लेइंग द गेम विद यू। आई जस्ट होप कि आपको भी मजा आया हो।
3: बहुत बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच यार।
0: भाई थैंक्स टू यू गाइस, क्योंकि इतने एंथो के साथ जो आप गेम खेलते हैं मेरा तो दिन ही बन जाता है। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और अगर आपको ये सारे गेम सुन के फोमो हो रहा है देन वरी नॉट, मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे जाके अपना नंबर DM कीजिए। रेस्ट आई विल टेक केयर ऑफ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: about Bollywood Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कंगना रनौत, आपका जो होने वाला हस्बैंड है उसने आपको छोड़ दिया है एक समोसे के लिए, आप उस समोसे को क्या कहेंगे?
3: जिंदगी में एक ऐसा काम किया है जो कि एक नींबू और मिर्च भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि तुमने मेरी नजर उतारी है। अच्छा तुम उसे ले गए और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अब हम दोनों मिलके चाय पियेंगे। एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी चाय के साथ।
2: समोसे के साथ एक हाइपोथेटिकल कॉन्वर्सेशन करती हुई कंगना रनौत ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
5: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
6: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
5: कम है के?
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6, 89.6,
9: 89.6 FM।

0: Every breath you take, every move you make, I will be there with you. What would I do without you? I want to love you forever and ever.
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
1: अरे घर में सब टीवी के रिमोट को लेकर लड़ते रहते हैं, क्या करूं?
2: तो तू भी अपना एक रिमोट ले ले, कभी लड़ाई में पीछे नहीं हटना, अपना डिफेंस अपने हाथ में है।

0: हाय हाय आप ही जाओ, जब इतना प्यार से बुलाओ तो हम क्यों ना आए। लेकिन हम फिलहाल मौसम के लिए इतना ही कहेंगे, आ भी जाओ ठंडी के मौसम, तुम आ भी जाओ, तुम्हारे इतनी याद आ रही है पूछो मत, क्योंकि ना तो गर्मी जाने का नाम ले रही है ना हमें ऐसी फीलिंग आ रही है कि आने वाले टाइम में थोड़ी ये गर्मी घटेगी। हाँ जी, आज भी जबरदस्त दोपहर में गर्मी थी। फिलहाल बातों की गर्मी लेकर आ गया मस्तमौला गौरव। मिर्ची घड़ी का टाइम 4:04 के करीब पहुंचता हुआ, और इन सब के बीच कतर के कोने कोने में क्या हुआ और कैसे आज हम लोगों ने GWM मिर्ची रिचार्ज में आइडियल इंडियन स्कूल के बच्चों के साथ कमाल धमाल किया, ये सब कुछ बताएंगे दोस्तों। लेकिन उसके लिए बस कान लगा लो, मिर्ची का वॉल्यूम बढ़ा लो और रेडियो एंजॉय करो मस्तमौला गौरव के साथ। एंड याद रखिए, ये मजा अब हमारे कतर में मिर्ची भाई आ रहा है, जहां एंटरटेनमेंट के साथ साथ सारी इन्फॉर्मेशन भी है। मिर्ची थॉट, शाम शानदार शुरुआत करते हैं।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: वन ऑफ माय फेवरेट, और आज किसी ने इस गाने को दिल से याद किया तो मैंने कहा यार अच्छा याद दिला दिया, मैं अभी प्ले करता हूँ। चलिए जी ये गाना सुनते हैं।

0: Mirchi. Escabana, buscabana, sacabana. Grabana. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga. Hello.
2: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो, मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
1: मोबाइल?
2: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
1: क्या रिपोर्ट आ गई है?
2: यही कि यह मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
1: मोबाइल चोरी हो गया?
2: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
1: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
2: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
1: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
2: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है, हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
1: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
2: भाई मैं कह रहा हूँ, चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
1: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
2: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
1: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
2: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
1: हाँ जी सर।
2: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
1: अच्छा बात करवा दो, कौन है
3: ये? ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर,
1: कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
6: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
5: This initiative is driven by GWM.
7: Подумайте, какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь.
6: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon. Coming soon. Mirchi Terminal Season 5, partnered by Papa John's.
8: Qatar, are you ready for the new pan pizza from Papa John's? Crispy garlic parmesan crust, Italian seasoning, 6 cheese blend and cheese edge to edge. The new standard of pan in Qatar at Papa John's. Order now.
6: Powered by iPay Wallet.
9: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ. No stress, सिर्फ trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
10: Let's do that iPay.
6: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
11: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super speciality clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
12: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
13: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
14: Baladna.
13: Taste that Qatar loves.
6: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.

अमीर शाहिद मलिक के आवाज में बह गया हंजुआ का दरिया यानी कि आंसुओं का दरिया। ये गाना सुनाया किसने भैया? लेकिन हमारे भी आंखों से आंसुओं का दरिया ही बह जाता था जब हमें साइंस में कुछ समझ नहीं आता था, और स्पेशली जब भी बात आती थी स्पेस की, प्लैनेट की, अंतरिक्ष की, हमारा दिमाग चक्कर खा जाता था कि यार प्रैक्टिकल नॉलेज दो, टीचर पढ़ाए जा रहे हैं ऐसे रिंग बनती है इसमें रात साल भर ऑर्बिट पे चलते हैं। कुल मिला के बड़ी कंफ्यूजिंग लाइफ थी, लेकिन आज के बच्चों के लिए चीजें आसान है। और कतर में तो बकायदा भैया इस वक्त चल रहा है हमारे कतर में वर्ल्ड स्पेस वीक 2026 #974974 हम आपको बता दें कि अल थुरैया एस्ट्रोनॉमिकल डोम जो कि बिल्डिंग 41 में है कतारा में, वहां पर 4 डेज का इवेंट चल रहा है और अक्टूबर 7 तक ये चल रहा है, यानी कि आज और कल भी है। शाम 4 बजे से शुरू होकर 7 बजे तक चलता है और इसको बेसिकली SL7 वर्ल्ड स्पेस वीक कतर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के एम्बेसडर सेंटर जिसे हम सुफारा अहदफ भी कहते हैं उनके साथ मिलकर ये ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका मेन एम यही है कि पब्लिक में स्पेस साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब के बारे में अवेयरनेस बढ़ पाए। और इवेंट में ढेर सारे इंटरेक्टिव शोज कराए जाते हैं, फिल्म दिखाई जाती है, यहाँ पर एजुकेशनल वर्कशॉप है जो आपके बच्चों को स्पेस से जुड़ी बातें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें सब समझाई जाती हैं ताकि आने वाले टाइम में वो ग्रीन एनर्जी को भी चुने एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें। कैसे रिसाइकल चीजों को यूज करना है, रीयूज करना है, रिफ्यूज करना है प्लास्टिक प्रोडक्ट को, ये भी यही समझ में आएगा। तो भाई ये समझ लीजिए कि इसका मेन मकसद है स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बच्चों को अवेयर करना, पब्लिक को अवेयर करना। और अगर मौका है और आप आज खाली हैं, कतारा जाइए अपने बच्चों को लेकर, शाम 4 बजे से शुरू होकर 7 बजे तक चल रहा है ये स्पेस वीक, जरूर दिखाइए ताकि उन्हें भी तो लगे कि उस दुनिया में क्या क्या खास होता है। यार हम उतने अपने टाइम में लकी नहीं थे, पर आज के बच्चे लकी, उन्हें ये दिखाओ ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 89.6 मिर्ची वाली था।

0: कहना द कहना, और क्या कहना है हम बता दे। नैना कह रही है मुझसे अगर फ्यूचर में अपनी जिंदगी को जोड़ना चाहते हो तो मुझे गोल्ड के बारे में थोड़ा सा जानना है। यस, क्योंकि नैना को पता है गोल्ड इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। और अगर नैना के दोस्त आप हैं और आपको लगता है कि यार सही कह रही है नैना, गोल्ड में राइट टाइम टू इन्वेस्ट, तो रेट हम बता देते हैं अल्फरदान एक्सचेंज के। गोल्ड अपडेट,
1: गोल्ड अपडेट।
0: यस, अल्फरदान एक्सचेंज जहां मिलती है आपको 24 कैरेट स्विस गोल्ड की गारंटी विद पैम्प, वहां आज आपको मिलेगा पैम्प 1 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार 562 कतारी रियाल में, पैम्प का 5 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार एट 2632 कतारी रियाल, पैम्प 10 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार एट 5193 कतारी रियाल, पैम्प का 1 औंस गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार 16051 एंड पैम्प 10 तोला गोल्ड बार इज एट 59581 कतारी रियाल। दोस्तों मैं कह रहा हूं पैसे हैं, रखे हैं, राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, ताकि आने वाले दिनों में इसको आप अच्छे रिटर्न के साथ वापस लें। एंड शुद्ध गारंटी दे देता आपको पैम एट 2632 कतारी रियाल, पैम 10 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार एट 5193 कतारी रियाल, पैम का 1 औंस गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार 16051 एंड पैम 10 तोला गोल्ड बार इज एट 59581 कतारी रियाल। दोस्तों मैं कह रहा हूं पैसे हैं, रखे हैं, राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, ताकि आने वाले दिनों में इसको आप

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरी
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Looking to grow your business in Qatar's booming hospitality and food industry? Then don't miss Hospitality Qatar 2026, the region's leading platform for hospitality, food service and tourism. Meet key decision makers, investors and industry professionals. Showcase your latest products and innovations and unlock new business opportunities through dedicated B2B matchmaking. Join the 11th edition of Hospitality Qatar from 12th to 14th October at DECC. Hospitality Qatar 2026, where business meets opportunity.

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट। क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आपके साथ फिर से आ गया
1: मस्त मौला गौरव।
0: नमस्ते, एंड आप रहिए सदा हंसते, हम यही कहेंगे। लेकिन फिलहाल मौसम जरूर दोपहर के टाइम थोड़ा रुला रहा है, पर घबराना नहीं है, बदलेगा ये।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
3: वेदर अपडेट।
0: अगर बात करें दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर आज 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचा, और बड़ी बात यह है मिनिमम 30 में ही रह रहा है। ये अभी 30 से नीचे आएगा तभी चीजें बदलेंगी दोस्तों। लेकिन ये बस इतना ही कहना जरूरी है कि ह्यूमिडिटी की वजह से हमें ज्यादा गर्म लग रही है। 54% ह्यूमिडिटी का आज परसेंटेज है, जो कि गर्मी की रियल फीलिंग दोपहर में हमें करा रहा था। हवाओं की रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। जिस दिन जैसे ये 25 हो जाएंगी, ह्यूमिडिटी 25 हो जाएगी, बस आप देखिएगा चीजें बदल जाएंगी। लेकिन तब तक इंतजार कीजिए, अभी देखिए अक्टूबर आ गया, फटाफट नवंबर में मौसम बदलेगा, दिसंबर में एकदम टकाटक हो जाएगा, जनवरी में बहुत अच्छा लगेगा। 4 महीने हैं अभी। 89.6 मिर्ची वाली
4: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Bollywood, Bollywood, bold
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: भूमि पेडनेकर, हमारे स्कूल में तो टॉयलेट में जाके टॉयलेट करते थे, आपके स्कूल में क्या करते थे?
3: In our school, toilet used to be the place जहाँ पे सब जाके रोमांस करते थे. That used to be the spot in my school.
4: टॉयलेट
3: की हाँ.
4: स्कूल था, कंजर खाना खुला हुआ था.
3: दोनों.
2: इसी कहानी से मुझे लगता है टॉयलेट एक प्रेम कथा का नाम रखा होगा. नहीं, आप सुन रहे थे अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
5: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
6: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
5: This initiative is driven by GWM.
7: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही.
6: मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: सर, कार में बच्चे उल्टी कर देते हैं, क्या करूं?
1: अरे अरे अरे, सिंपल है ना, तुम एक काम करो, गाड़ी को रिवर्स में चलाओ। कार उल्टी चलेगी तो बच्चे भी सीधी करेंगे।
2: What?

89.6 मिर्ची वन पर वारू फॉरएवर मिर्जापुर द फिल्म का गाना सुनाया किसने? इस फिल्म में हमारे गुड्डू का एक डायलॉग था, अब हम वे बड़े और हमें चाहिए इज्जत, समझे, लिविर लिविर करना अब हम बंद कर चुके हैं। तो बस मौला गौरव आपको दे रहा है बॉलीवुड मेगा कॉन्सर्ट, जहां आने वाली है अनुराधा पौडवाल, विनोद राठौड़ एंड साथ में जूनियर कुमार सानू। लेकिन अगर उसके पासेस जीतने हैं तो हमारे सवालों का जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा बड़े भाई। एंड आज का सवाल, अगर आप रामी प्रोडक्शन इंटरनेशनल के इस इवेंट में जाना चाहते हैं तो जवाब दीजिए कि ये जो मिर्जापुर है इसमें हमारे कालीन भैया का नाम क्या है? आइए देखें कितने लोगों को याद है मिर्जापुर वेब सीरीज जो आई है उसमें कालीन भैया को हम लोग सब जानते हैं, पंकज त्रिपाठी कालीन भैया, लेकिन कालीन भैया का असली नाम क्या है? 5000 1896। यस, असली नाम मतलब पंकज त्रिपाठी पूछ रहे हैं, कालीन भैया का उस ओटीटी सीरीज में नाम क्या है ये पूछ रहे हैं। 5000 1896 पे वॉइस नोट में अपना जवाब भेज दो, क्या मैं यार गौरव जो तुम सवाल पूछ रहे हो उसका जवाब है उनका ये नाम है। 5000 1896। मस्त बोलो गौरव आगे बढ़ रहा है, 89.6 मिर्ची वन पर इंतजार कर रहा है हमारे उस सीरीज में जिसका नाम है मिर्जापुर वेब सीरीज, उसमें कालीन भैया का असली नाम क्या है? इंतजार कर रहे हैं 5000 1896 पे, मस्त बोलो गौरव आपका इंतजार। एंड जल्दी जल्दी समय जवाब भेजो रिकॉर्ड करके वॉइस नोट में, बी प्राक सच का दायरा बताने आए, आइए इनका गाने का दायरा बढ़ाएं।

0: Mirci.
1: Discabana, puscabana, sacabana. Murga, murga. La vieva la murga.
0: Mirci, murga.
2: हेलो,
3: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: बोल रहे
3: हैं राज जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
3: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
2: लेकिन है किस लिए ये तो बताइए, किस लिए, कहाँ पे लगाना
3: नहीं,
2: है?
3: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं, हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा।
2: मैगजीन
3: है? हाँ, वही वही वही मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी नहीं, नहीं पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम है आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
2: बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास? तो
3: नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना? ये
2: कॉपी मुझे भी भेजना
3: राज जी, एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
2: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेज।
3: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। आप थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहें तो?
2: हाँ बिल्कुल बताइए।
3: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वॉन्टेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया, आपका आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। Festivities की planning, it's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है। अब सिर्फ 25% pay करें and lock in your gold rate 8 November तक. Then if the price increases at the time of purchase, आप पा सकते हैं the booked rate. और अगर gold price drop होती है, you get the lower rate. है ना enough reasons to start the celebrations already? तो आज ही अपना price locked, gold secured कीजिए with Malabar Gold and Diamonds.
4: Back to school means more journeys, more traffic, and more reasons to drive with peace of mind.
5: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400 with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start, and lockout assistance. Plus, flexible payments and 7% cashback. Call 800-0786 or visit BimaOnline.com.
4: Bima for your peace of mind. Terms and conditions apply.
6: Hi, this is Anuradha Podwal.
7: This is Vinod Rathod and we are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
8: Hi, I am Kajiva Rahman. We are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
9: Experience the magic of their voice on 30th October 2026 at Aspire Zone Ladies Sports Hall, Doha, Qatar, 6:30 p.m. onwards. In association with Indomie Noodles, Lulu Hypermarket, iPay and Green Printers, online ticketing partners, qtickets.com, Platinum List, Virgin Megastore and S-City. For more information, contact 6004369, an event by Rami Productions International.
10: Our business is our business, none of your business.
11: But Didi, our entertainment is your entertainment.
12: Qatar ka number one radio station.
13: 89.6
14: FM, Mirchi 1. It's hot.
15: Mirchi Terminal Season 5, partnered by Papa John's.
16: Qatar, are you ready for the new pan pizza from Papa John's? Crispy garlic parmesan crust, Italian seasoning, 6 cheese blend and cheese edge to edge. The new standard of pan in Qatar at Papa John's. Order now.
13: powered by iPay Wallet.
17: अपनो को भेजिए पैसे with best rates iPay Wallet के साथ. No stress, self trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
18: Let's do the iPay.
13: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
19: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super specialty clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
20: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
21: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
22: Baladna.
21: Taste that Qatar loves.
13: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.

0: मिथराज की आवाज में अखिया गुलाब, खूबसूरत गाना खत्म हुआ और आ गया आपके साथ मस्त मौला गौरव। एंड सजनों, जब तक आपके साथ हूँ फिगर नॉट मंथ लगाए रखता हूँ और अलग अलग जगह के पासेस भी जिताता हूँ। आज का ऐसा ही मामला है। यस, बॉलीवुड का वो मेगा कॉन्सर्ट जहाँ अनुराधा पौडवाल, विनोद राठौड़ एंड साथ ही साथ तसीबुर रहमान जो की जूनियर कुमार सानू है, तीनों आ रहे हैं। ऐसे में हमने सवाल का जवाब मांगा है आपसे और आज का सवाल बड़ा ही सिंपल है कि फिल्म मिर्जापुर या फिर वेब सीरीज मिर्जापुर के जो हमारे कालीन भैया हैं, उनका सीरीज में असली नाम क्या है?
1: हाय गौरव, मेरा नाम नितिन है और कालीन भैया का सीरीज में असली नाम अखंडानंद त्रिपाठी, शायद ये सही हो।
2: गुड इवनिंग गौरव, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक है। सॉरी, मैंने वो सीरीज नहीं देखी है
0: जी,
2: लेकिन मैंने जस्ट गूगल किया और आंसर किया, उनका नाम होता है अखंड आनंद कालीन त्रिपाठी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।
0: क्या बात है।
3: गुड इवनिंग गौरव, कैसे हो? मेरा नाम अभी है। आपने जो क्वेश्चन पूछा था कालीन भैया का मिर्जापुर में क्या नाम है, तो अखंडानंद त्रिपाठी उनका नाम था।
0: ओके,
3: गुड डे। थैंक
1: यू। हेलो गौरव भाई, क्या हाल है, कैसे? मेरा नाम है मोहम्मद अकरम
0: जी।
1: और ये जो मिर्जापुर में कालीन भैया का नाम था अखंडानंद त्रिपाठी।
0: ओके,
1: दर्शन नमस्कार गौरव भाई, मेरा नाम दंडापानी शर्मा हूँ, मैं नेपाल बड़ा हूँ। क्वेश्चन का आंसर अखंडानंद त्रिपाठी और यहाँ जाए मेरा साथी दिनेश को बर्थडे, प्लीज विश कर दीजिए।
0: चलो जी, दिनेश के साथी को बर्थडे छ, तो दिनेश भाई हैप्पी बर्थडे, आप जियो हजारों साल, साल के दिन 50,000। मस्मोला गौरव आपके साथ, बारी आ गई है विनर की। तो अब जब ऐसे में हमारे भाइयों ने इतने सारे लोगों ने जवाब दिया है तो एक लकी विनर का नाम तो बताना पड़ेगा। तो हमारो दंडापानी शर्मा, आप बन गया विनर, दई आपको मिलेगा ये बॉलीवुड मेगा कॉन्सर्ट का पास। जाइएगा, एंजॉय करके आइएगा और एक से एक नगमे 90s के सुन के मौज कराइएगा। मिर्ची इज हॉट। अरिजीत सिंह, शाश्वत सिंह कह रहे हैं जमाना लगे लेकिन हमें तो 2 मिनट लगते थे किसी से।

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: हेल्दी स्किन, ब्यूटीफुल हेयर और लास्टिंग कॉन्फिडेंस, अब एक्सपर्ट केयर के साथ
6: किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर बरवा सिटी में कंसल्ट करें डॉक्टर श्वेता बालाचंद्र राव, स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी।
5: बोटॉक्स एंड फिलर्स, लेजर हेयर रिडक्शन, हाइड्राफेशियल, पीआरपी, एक्ने, पिगमेंटेशन और मेलास्मा ट्रीटमेंट्स।
6: कॉल 4419-4333 किम्स हेल्थ बरवा सिटी, बुक योर कंसल्टेशन टुडे।
7: Looking to grow your business in Qatar's booming hospitality and food industry? Then don't miss Hospitality Qatar 2026, the region's leading platform for hospitality, food service and tourism. Meet key decision makers, investors and industry professionals. Showcase your latest products and innovations and unlock new business opportunities through dedicated B2B matchmaking. Join the 11th edition of Hospitality Qatar from 12th to 14th October at DECC. Hospitality Qatar 2026, where business meets opportunity.
8: Looking to grow your business, expand your network and reach the right customers? Introducing the Qatar Business Card Directory, QBCD, the flagship product of Media Plus WLL Doha, now proudly launching its 20th edition. Be part of this major milestone. Enroll your business card today and take your business towards greater visibility and stronger connections. For business inquiries, call 5509-389 or download the QBCD app now. Connect, promote, grow.
9: अबे कौन है?
10: उत्तपा।
9: उत्तपा कौन?
10: उत्तपा में दो डोसा और सांबर ऑर्डर किया था, आया क्या?
9: खट खट, हो दैट।
11: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: नजर नहीं लगेगी सर, काहे को परेशान है, आप जैसा काला टीका जो साथ में है। लेकिन मैं कहता हूँ हमारे प्रकृति को नजर लग रही है। हाँ जी, और ये नजर हम लगा रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हम ज्यादा सोच नहीं रहे। हमारे कतर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया है वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड डिसैलिनेशन एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, जो कि म्युनिसिपैलिटी टैप में आता है। लेकिन फिर भी क्या है, हमारी प्रिफर्ड चॉइस है अभी भी हम बॉटल्ड वाटर लेकर आते हैं। हम आपको बता दें, अकॉर्डिंग टू शनाक, ये एक स्टडी है जो बताती है कि कंज्यूमर किस चीज को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग कतर में ड्रिंकिंग वाटर के लिए अभी भी लोग बॉटल्ड वाटर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कतर गवर्नमेंट हैज हेविली इन्वेस्टेड in building one of the world's most advanced desalination and water distribution system and municipal tap water har tarah ke international quality standard ko kahin na kahin maintain kar kar aa raha hai and aise mein agar aap iska thoda istemal zyada karna shuru kar de to aap bahut kuch hamare environment ke liye kar payenge aur qatar ke water infrastructure ko bhi aap thoda aur mazboot hote dekhenge। mujhe puri umeed hai is baat par aap gaur kijiye ki jab aapke tap mein aane wala pani itna surakshit hai कि इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता है और आप उससे पी सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको इस बारे में ध्यान देना है। कभी कभी हमें चीज़ें इजी लगती हैं, पर शायद हम अगर दूसरी चीज़ों की आदत डालें तो हम बहुत हद तक खुद के लिए भी अच्छा करते हैं, एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा करते हैं और मार्केट में भी चीज़ें चलती रहेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर हमें भी अपना ख्याल रखना है। हम बाहर जा रहे हैं, हम ज़रूर बॉटल वाटर लेकर जाएं, लेकिन जब तक घर में हैं अगर हम टैप वाटर यूज़ कर पाएं तो कोई बुराई नहीं है। 89.6 मिर्ची 1 पर ऐसी काम की बातें हम आपको बताते ताकि आप उसको अपनी जिंदगी में उतारते और उसके बाद थोड़े पैसे बचाएंगे एंड साथ ही साथ आप अच्छा भी फील करेंगे कि आप सोसाइटी को भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे वेलबींग के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात को समझिएगा। एंड मस्त मौला गौरव आपके साथ 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: तुषार कपूर आपका कैरेक्टर इन गोलमाल फ्रेंचाइज इज सेंसेशनल. कितना मजा आया टू माउथ दोज लाइंस.
3: आई डोंट हैव टू माउथ दोज.
4: सॉरी ब्रो, सॉरी.
3: तो मैं क्यों क्रेडिट दूं? नहीं, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ साजिद फरहाद. इनकी नरेशन, मतलब दे जस्ट ट्रांसलेट रोहित विजन सो वेल इन दिस जोन, इन दिस जॉनर. एंड आई विश आई गेट टू डू अ फिल्म समडे वेयर आई हैव टू माउथ देयर लाइंस.
2: तुषार कपूर, इनफैक्ट वी विश कि आपको कभी भी गोलमाल की किसी भी फ्रेंचाइज में लाइंस ना मिले, सिर्फ ए ई आई ओ यू. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
5: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
6: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
5: This initiative is driven by GWM.
7: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
8: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है.
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

अरिजीत सिंह की आवाज में ओ बेदर्द है, और इतना दर्द है यार इस गाने में ना, मुझे बड़ा कमाल लगता है। और सबसे खास बात है ना, ऐसे गानों को जब आप गाइए तो फिर लिरिक लिखते हुए अमिताभ भट्टाचार्य क्या सोचते हैं नहीं आता था। प्रीतम दा उतनी खूबसूरती से इस गाने को सजा देते हैं, अरिजीत गा देते हैं, एंड ऐसे गाने सुपर डुपर हिट हो जाते हैं। फिलहाल हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा हो जाता है जो हम कभी सोचते नहीं है, वो है सैलरी ऐसे आती है चट मंगनी पट ब्याह की तरह ठड़क से निकल जाती है। एंड अगर आपके पास बची है तो घर भेजो पैसे, क्योंकि हम रेट्स बता रहे हैं आईपे के। जैसे इस वक्त एक कतरे रियाल के बदले भारतीय मुद्रा में आपको मिलेंगे 26 रुपए 41 पैसे, 26.41 INR। इसके बाद अगर हम श्रीलंकन रुपीस की बात करें अगेंस्ट कतरे रियाल, तो वन कतरे रियाल के बदले श्रीलंकन रुपीस 90.77। पाकिस्तान रुपीस की बात करें जनाब, वाहिद कतरे रियाल के बदले 76.17, 76.17 पाकिस्तानी रुपीज। तपाई को नेपाली रुपीज का रेट चल दाजो 42.25 का भलचर रेट है दाई, हाँ जी 42.25 का रेट चल नेपाली बहनी अगर गार भेजन लाई सही टाइम। अगर बंधु बांग्लादेशी टाका बात करेगा दादा बाड़ी से पटी जाओ, अच्छा रेट मिल रहा है कतरी रियाल के बदले 33.75, तो 33.75 एटर रेट चले अगर हम बांग्लादेशी टाका बात करेगा तो अगेंस्ट कतरी रियाल 33.75। ये था आईपे का एक्सचेंज रेट। आईपे ऐप आपको बहुत सारी सुविधाएं देता है, एक छत के नीचे आप सारे अपने खर्चों को मैनेज करते हो, बिल भरते हो, सब एक बार एक स्वाइप में एक क्लिक में, एंड उससे भी बड़ी बात पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर की सबसे कम फीस भी आपको यही मिलती है। 89.6 मिर्ची वाली थॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
0: ए मोटा भाई, मेरी मेड बार बार छुट्टी पर चली जाती है, मैं क्या करूं?
1: अरे तो बढ़िया है ना, तू भी ऑफिस से छुट्टी ले ले और मेड के साथ छुट्टी एंजॉय करना डालेंग।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: राजभर सुबोध शर्मा की आवाज में तेरा मेरा रिश्ता पुराना। और कतर में आप जब पीएचसीसी या किसी भी अहमद हॉस्पिटल में या फिर जनरल हॉस्पिटल में जाइए, आपको ऐसी फीलिंग आती है कि हमारा डॉक्टर से रिश्ता पुराना ही है, क्योंकि हमारी देखभाल यहाँ एकदम घर के बाशिंदों जैसी ही होती है। बीइंग अ रेसिडेंट आई कैन से दिस कि कतर में जब बात हेल्थ केयर की आती है तो हमारे लिए बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। एंड उसका सबूत देखिए, कतर में अगर हम बात करें तो सितंबर 2026 में रिकॉर्ड 6,28,118 विजिट्स हुई हैं सारे हेल्थ सेंटर्स पर, यानी कि लगभग 6,30,000 लोग जिनको सेहत से रिलेटेड कोई भी इशू था वो यहाँ के हेल्थ सेंटर्स पर पहुंचे, उनको सही ट्रीटमेंट मिला, दवाइयाँ मिली और आज वो एकदम चुस्त तंदुरुस्त है। मैं सच कह रहा हूँ, मम्मी पापा के बाद या आपकी धर्मपत्नी के बाद या धर्मपति के बाद आपका अगर कोई कतर में ख्याल रखता है, विश्वास कीजिए यहाँ का हेल्थ केयर, एंड उसके लिए यहाँ की हुकूमत को दिल से सलाम। और ये नंबर्स बता रहे हैं सर कि आपकी एक परेशानी पर एम्बुलेंस से लेकर सारे मेडिकल स्टाफ एकदम अलर्ट हो जाते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसका 24 घंटे सातों दिन 365 दिन तैयारी की जाती है, आपका देखभाल किया जाता है। एंड इसके लिए सच में हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम कतर में रहते हैं। थैंक यू फॉर ऑल दी मेडिकल फैसिलिटीज एंड उम्मीद है आने वाले टाइम में और बड़ी होगी। लेकिन मस्त मौला गौरव आपके साथ शो को आगे बढ़ा रहा है मिर्ची थॉट
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Energy. Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na vieta la burga.
1: हेलो,
2: कुड आई स्पीक टू मनीष प्लीज?
1: स्पीकिंग,
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके मनीष, आई नीड योर फेवर, आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी। मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट, कि पहले इंसान एप था, आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में, यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया, राइट।
1: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
2: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट। एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे। इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके?
1: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ।
2: तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था, तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे। तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स के सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर। आई एम श्योर कि सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था। बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी। तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए, कल का रख ले। मेरी बात सुनो, आई एम प्रोफेसर, मेरी बात सुनिए यार। आप हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है।
1: हेलो,
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी, मेरी बात सुनिए, मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने, उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार, मैं मुर्गा बनाया है, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार। मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार। इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। Festivities की planning, it's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है। अब सिर्फ 25% pay करें and lock in your gold rate 8 November तक. Then if the price increases at the time of purchase, आप पा सकते हैं the booked rate. और अगर gold price drop होती है, you get the lower rate. है ना enough reasons to start the celebrations already? तो आज ही अपना price locked, gold secured कीजिए with Malabar Gold and Diamonds.
3: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
4: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
3: Powered by iPay Wallet.
5: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ no stress, सिर्फ trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
6: Let's do the iPay.
3: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
7: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super speciality clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
8: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
9: With Baladna milk, laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
10: Baladna.
9: Taste that Qatar loves.
3: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.

क्या आपके गालों पर बहुत थप्पड़ पड़े हैं? तो ये काम की बात है। अरे भाई, अगर थप्पड़ पड़े हैं तो आप पावर स्लैब का हिस्सा बन सकते हो जो हमारे कतर आ रहा है। हाँ जी, जब तक हम स्कूल में मार खाते थे हमको लगता था पिटाई करवाना बड़ी खराब बात है, लेकिन जब से मैंने ये पावर स्लैब के बारे में सुना मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं भी कभी जिंदगी में यहाँ जा सकता हूँ। पावर स्लैब 27 नवंबर 19 को पहली बार हमारे कतर में आ रहा है। यस, और ये होगा मॉन्स्टर एनर्जी लेकर आ रहे हैं, अली बिन हमद अल अथिया अरीना में होने वाला है, और 2 चैंपियनशिप टाइटल जो है वो लाइन पर होगी। एंड आई एम श्योर किनोनीज वर्सेस गॉडफ्रे का मैच पूरी दुनिया के लोग देखेंगे, क्योंकि ना यहां पर सर थप्पड़ से डर नहीं लगता, थप्पड़ से इनाम मिलता है, ये समझ लीजिए। हम आपको बता दें, मैंने बहुत सारे वीडियोस अब तक देखे हैं जहां पर एक दूसरे को थप्पड़ मार मार के बेहोश कर देना है, गिरा देना है, एंड जो नहीं उठ पाया वो हार गया। अब सोचिए आप, इस तरह के कॉम्पिटिशन से हम हिंसक तो बना रहे हैं, तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि कभी कभी आपको इस तरह के पटाखे थप्पड़ से भी ना प्राइजेस मिल सकते हैं। ये मुझे पहली बार पता लगा, वैसे स्कूल डेज में मैंने बहुत खाए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इस गेम में मैं ट्राई कर सकता हूं, लेकिन सामने वाले का हाथ कैसा है पहले वो भी तो देखना पड़ेगा ना। वेल, अपने तरह का ये अनूठा गेम हम जरूर देखेंगे। एंड थैंक यू टू विजिट कतार, जो हमारे कतार में हमें ये पहली बार मौका दे रहा है कि हम पावर स्लैब को देख पाए। तैयार हो जाइए दोस्तों, हमने UFC कतार में देखी, अब इस पावर स्लैब की 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

अरे हम इतनी चीज तो बता रहे हैं, बार बार कहे कर रहे हो टेल मी समथिंग है ना, सुनो ध्यान से। भैया ऐसा है कि कतर बोट शो की तैयारी कर लो, ये भी हमारे कतर में एकदम तैयार है आने को हमारे लिए। यस, थर्ड एडिशन ऑफ कतर बोट शो फ्रॉम नवंबर 4 टू नवंबर 7। अरे हम इतनी चीज तो बता रहे हैं, बार बार कहे कर रहे हो टेल मी समथिंग है ना, सुनो ध्यान से। भैया ऐसा है कि कतर बोट शो की तैयारी कर लो, ये भी हमारे कतर में एकदम तैयार है आने को।

सेट एंड अब ओल्ड दोहा पोर्ट पर एक बार फिर से नाव का मेला लगेगा सर, लेकिन ये महंगी वाली यॉट होंगी। इसके अलावा मरीन इंडस्ट्री से रिलेटेड ढेर सारे लोग जो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स के बहुत सारे लोग एक साथ आएंगे एंड हर साल ये बड़ा होता जा रहा है। एंड मुझे लगता है इस साल हम तो बस बैठे हैं सर, इवेंट बहुत कम हुए हैं, अब तो हम इंतजार कर रहे हैं ऐसे हर मौके का जहां जाएं मौज करके लौटें। सो November 4th to November 7th वी हैव टू लुक फॉर दिस कतर बोट शो, क्योंकि ये की प्लेटफॉर्म है जो कतर को ग्लोबल मैरिटाइम डेस्टिनेशन के लिए एक तरह से प्रेजेंट कर रहा है एंड साथ ही साथ कहीं ना कहीं कतर नेशनल विजन 2030 को भी अलाइन करता है, क्योंकि दुनिया भर से लोग आते हैं कि मरीन इंडस्ट्री के बेहतरीन प्रोडक्ट से लेकर बेहतरीन यॉट तक यहां मिल जाएंगे। 89.6 मिर्ची वन, कभी हमारा भी अपना यॉट हो यही हमारी सोच है। एक बार हमने विजय माल्या साहब को अपनी पर्सनल यॉट पे बढ़िया इंटरव्यू करते हुए निखिल चिनापा के साथ देखा था, तब से हमारे मन में है कि एक छोटी नाव सही पर अपनी यॉट जरूर होगी। सर मिर्ची इट्स हॉट, एक दिन होगा देखना।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अर्शद वार से आपका एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम चल रहा है, चाहे ओटीटी की बात हो या थिएटर की। प्रीतम और पेड्रो में आपने राजकुमार हिरानी से अच्छे खासे पैसे मांगे होंगे, नहीं?
3: पैसे तो मैंने दिए इनको काम करने के लिए। वो पिक्चर चलने पे डिपेंड करता है। पिक्चर बिट गई तो इससे बुरा साल नहीं होगा।
4: उनकी दो एक सीरीज एक फिल्म, मैं ही हूँ जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हूँ।
2: राजकुमार हिरानी में एवरीवन बी एज अनएम्प्लॉयड एज यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑल
0: बॉलीवुड Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
5: Back to school means more journeys, more traffic, and more reasons to drive with peace of mind.
6: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400 with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start, and lockout assistance. Plus, flexible payments and 7% cash back. Call 800-0786 or visit BimaOnline.com.
5: Bima, for your peace of mind. Terms and conditions apply. GWM ke Mirchi Recharge mein DMIS school mein bachcho ne kiya fun. Let's hear it from them.
7: It was the best. I like the magic show.
8: Magic show, and you?
7: It was very nice.
8: You liked it?
7: Yes.
8: We should come again?
7: Yes.
8: What's your name?
7: Aira.
8: And yours?
7: Anvita.
8: What was the best?
7: The magic show.
9: This recharge is so cool. Better than anything else.
10: Mirchi recharge!
11: Thank you, Mirchi. Thank you, GWM. We enjoyed. It's hot.
12: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
13: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
14: बार बार
13: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
15: 89.6
16: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे

0: यार जैसे अच्छे हीरे की परख जौहरी को होती है, अच्छे खाने की परख अच्छे शेफ को होती है, और मुझ जैसे लोगों की बात करिए तो हम तो सूंघ के पहुंच जाते हैं कि देसी घी में तलती कचौड़ी कहां मिल रही है। वैसे ही संगीत प्रेमी भी ना संगीत की महफिल से जुड़ जाते हैं, और एक ऐसी महफिल के बारे में बताने जा रहा हूं मैं। और ये म्यूजिकल नाइट्स लेकर आए हैं बंट्स कतर। यस, बंट्स कतर जो कि एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईसीसी अंडर द एजीज ऑफ एम्बेसी ऑफ इंडिया है, वो बंट्स कतर लेकर आ रहे हैं तरंग 2026 म्यूजिकल नाइट विद कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा। वेल, ये कहां होने जा रहा है? डीपीएस ऑडिटोरियम में, ऑन 9th of October, फ्राइडे का दिन है। आपके लिए फ्राइडे की एक पार्टी बिल्कुल तैयार करिए। टाइमिंग्स है 4:30 ऑनवर्ड्स, एंड जैसे ही पहुंच जाएंगे आप वहां बैठ जाएंगे क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चल रहा है मामला। एंट्री बिल्कुल फ्री है, और यहां परफॉर्म करने वाली है सिंगर अनुराधा भट्ट, साथ ही साथ जसकरण सिंह एंड शोधन शेट्टी, ये सब के सब तो होंगे वहां पर। कुछ और इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के लिए दीपक होंगे, वामन होंगे, राजेश होंगे, राजगोपाल होंगे, एंड ढेर सारे कल्चरल प्रोग्राम। सो इफ यू वांट टू स्पेंड योर फ्राइडे विद अ म्यूजिकल थीम वाली नाइट, सो दिस इज वन सच इवनिंग, तरंग 2026 म्यूजिकल नाइट जो लेकर आए हमारे कतर में बंट्स कतर। एंड आई एम श्योर अगर आप संगीत के प्रेमी हैं तो इस महफिल का हिस्सा बन ही जाएंगे। तरंग 2026 म्यूजिकल नाइट बाय बंट्स कतर, एंड ये होगा 9th of October फ्राइडे के दिन, डीपीएस ऑडिटोरियम अल वखरा दोहा कतर में। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
0: अरे भाई इतनी भागदौड़ में मैं अपने लिए वक्त कैसे निकालूं?
1: तो यार भागदौड़ में वक्त निकाल के देखना ना मुश्किल होता है। तू एक काम कर, घड़ी हाथ पे पहन, रिस्ट वॉच, जब वक्त देखना हुआ हाथ घुमा के देख लिया, सिंपल।
2: साले का खोपड़ी तोड़ साले का।
3: फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है, फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी। डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस, मीट बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिएट वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल अंडर वन रूफ। तो मार्क योर कैलेंडर 12th से 14th अक्टूबर, DECC दोहा, फूड कतर 2026। कनेक्ट, डिस्कवर और ग्रो।

यार आज ना मुझे अपने स्कूल डेज की याद आ गई। मुझे याद है मैंने अपनी मम्मी को कहा था, मम्मी मैं ना एनुअल फेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मुझे ना ब्राउन पैंट ब्राउन शर्ट चाहिए। मम्मी बोली हैं ये कौन सा, और मैंने बोला एकदम मुझे पेड़ के कलर वाला ब्राउन कलर चाहिए, कैसे भी ला के दो मम्मी। एंड मम्मी ने मोहल्ले में आंटीज के साथ जुगाड़ करके फाइनली मुझे ब्राउन पैंट ब्राउन शर्ट दे दी। एंड प्रोग्राम वाले दिन जब मम्मी आई तो भाई पूरा प्रोग्राम देख के जब मम्मी घर पहुंची तो बोली तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारी तो कहीं दिखाई नहीं पड़े तुम हमें। हमने कहा मम्मी तुमने ब्राउन शर्ट ब्राउन पैंट पहनाई थी, उसके ऊपर टीचर ने हमें हरा पेड़ का मुंह लगा दिया था। अब हम उस हरे पेड़ में से झाक झाक के आपको देख रहे थे लेकिन आप दिख नहीं रही थी। कुल मिला के मम्मी ने दी दो चमाट, कही इसके लिए इतनी मेहनत करा है तू, पेड़ बन के खाली पीछे हवा हिला रहा था। लेकिन यार माओ का ना एक अलग ही प्यार होता है अपने बच्चों से। जब स्कूल की बात आती है स्पेशली एनुअल डे की, वो चाहते हैं उनके बच्चे पार्टिसिपेट करें। वेल आज ऐसे ढेर सारे बच्चों को मैंने देखा जो हर क्वेश्चन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, हर डांस में पार्टिसिपेट कर रहे थे और मैजिक शो में तो भाई अलग लेवल सरप्राइज था। यस बात करूं मैं GWM मिर्ची रिचार्ज की एट आइडल इन स्कूल। थैंक यू सो मच आइडल इन स्कूल के सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने धमाल किया हमारे साथ, पूरा माहौल बना दिया। एंड स्पेशली लास्ट में जब अंशु आफरीन स्टेज पे उनके साथ जुम्बा डांस करी थी ना, बच्चों की एनर्जी देखने लायक थी। एंड कोई हमें वापस नहीं आने देना चाहता था, सबने पूछा और गिफ्ट चाहिए और टॉफी चाहिए और ये चाहिए। हमने कहा पक्का प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम, यही बोल के वहां से कल्टी काटे। एंड अब अगला स्कूल कहां होगा इसके लिए तो बच्चों आपको मेहनत करनी है। 5000196 पर अपना नाम अपने स्कूल का नाम जरूर सेंड कीजिए, हम आपके स्कूल मैनेजमेंट से कॉन्टैक्ट करेंगे एंड आपके स्कूल में आकर GWM का मिर्ची रिचार्ज कर देंगे। 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: Mechi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La viva la burga. Mechi, burga.
2: Hello.
3: Mr. Gagan, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको. आपका अकाउंट नंबर 337103, राइट?
2: हाँ.
3: वन सेकेंड सर. सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000.
2: हाँ.
3: वन सेकेंड सर. आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
2: नहीं तो.
3: आपने नहीं किया है?
2: नहीं.
3: तो फिर किसने किया है सर ये? सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
2: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
3: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए. कम से कम मुझे पता चला, मुझे ऐसी पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है. आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाले, किसने निकाला? किस पे शक है आपको?
2: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना किसी को चेक दिया है ना मैंने एटीएम यूज किया है.
3: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
2: मैंने 2 पैसे भी निकाले.
3: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
2: मैंने कोई पैसा नहीं निकाला ना मैं किसी को चेक दिया. एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल? ओके
3: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको. अब मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
2: वो जो नोट लेके जा रहा है उस पर मेरा नाम लिखा है.
3: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल दिए हैं. मुझे नहीं पता. आप मुझे क्या बताएं? आप तभी से बात मत करिए. सर मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए. बॉस बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी. स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं. सर ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे. 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है.
2: क्या
3: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
2: किससे बात करनी है? किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
4: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ. बात आपसे ही करनी थी और बैंक हमारा मिर्ची का है. आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है. 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं. आपके अकाउंट में 1,42,000 रुपए हैं. और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था.
2: ना,
3: सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है. नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. Festivities की planning, it's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है. अब सिर्फ 25% pay करें and lock in your gold rate 8th November तक. Then if the price increases at the time of purchase, आप पा सकते हैं the booked rate. और अगर gold price drop होती है, you get the lower rate. है ना enough reasons to start the celebrations already? तो आज ही अपना price locked, gold secured कीजिए with Malabar Gold and Diamonds.
6: Looking to grow your business, expand your network and reach the right customers? Introducing the Qatar Business Card Directory, QBCD, the flagship product of Media Plus WLL Doha, now proudly launching its 20th edition. Be part of this major milestone. Enroll your business card today and take your business towards greater visibility and stronger connections. For business inquiries, call 5509389 or download the QBCD app now. Connect, promote, grow.
7: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही.
5: मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून. मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स.
8: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज. द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स. ऑर्डर नाउ.
5: Powered by iPay Wallet.
9: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ no stress, सिर्फ trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
10: Let's do the iPay.
6: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
11: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super speciality clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
12: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
13: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
14: Baladna.
13: Taste that Qatar loves.
6: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.

0: चलो भाई कतर में एक और जगह घूमने की हो गई। यस, हमारे कतर में तामीर रियल स्टेट लेकर आए हैं कैनाल वॉक।
1: #974
0: अब आप पूछेंगे कैनल वॉक क्या है, तो मैं आपको बता दूं इसे कैनल बे भी कह सकते हैं। यस, ये कैनल बे हमारे कतर में कत्तेफिन आइलैंड नॉर्थ की तरफ बना है, जो कि नया वाटर फ्रंट टूरिज्म एंड लेजर डेस्टिनेशन बन रहा है। एंड 580 मीटर लॉन्ग वाटर फ्रंट पर आप इस खूबसूरत इलाके में जाकर घूमेंगे। लेफ्ट साइड में आपको ढेर सारे अलग अलग ब्रांड्स के स्टोर नजर आने वाले, आउटडोर स्पेस होगी, लोग बैठेंगे, रेस्टोरेंट, कैफेज एंड रिटेल आउटलेट्स कुल मिलाकर जो मजा अब तक हम सिर्फ पर्ल में लेते थे, वो मजा अब हम इस वाटर फ्रंट के साथ मिलेंगे, जिसे कैनल वॉक का नाम दिया गया है। एक न्यू वाटर फ्रंट टूरिज्म डेस्टिनेशन हमारे कतर में तैयार है दोस्तों, यानी कि एक और विंटर डेस्टिनेशन एड ऑन हो गई है। अब इस बार ये भी कवर करना है, क्योंकि कतर में कुछ भी नया खुले वहां से हमारी जब तक सेल्फी ना आ जाए, एक दो हमारे विजिट ना हो जाए, हमें लगता है हमारे मन में अंदर कुछ काट रहा है कि गौरव तुम मिस कर रहे हो बेटा, तो वो मिसिंग तुम नहीं चाहते, हम जल्दी जल्दी जाएंगे यहाँ। 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट, आप भी प्लान कर लो।

0: मोबाइल अगर बैटरी लो हो रही है तो फटाक से पावर बैंक के साथ कार में कहीं लगा के भी आप चार्ज कर सकते हो, लेकिन बाद जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है तो क्या करोगे? हाँ जी, मान लीजिए आपने ध्यान नहीं दिया, थोड़ी सी लापरवाही की और आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको दिखा रहा है बैटरी लो, फिर आप परेशान हो गए, आप बोलोगे अरे अगला वाला है कहाँ, चार्जिंग स्टेशन कहाँ जाए, क्या करें? ऐसे में कतर अब आपके लिए चीजें आसान कर रहा है।
1: #974974
0: हम आपको बता दें कतर एक्सपेंड कर रहा है अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क को और साथ ही साथ डिजिटल सर्विसेज के साथ एक्सपेंड कर इसे बेहतरीन बना रहा है। इसमें एक स्मार्ट ऐप जो है वो शामिल हो जाएगा। अगला वाला है कहाँ, चार्जिंग स्टेशन कहाँ जाए, क्या करें? ऐसे में कतर अब आपके लिए चीजें आसान कर रहा है।
1: #974974
0: हम आपको बता दें कतर एक्सपेंड कर रहा है अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क को और साथ ही साथ डिजिटल सर्विसेज के साथ एक्सपेंड कर इसे बेहतरीन बना रहा है। इसमें एक स्मार्ट ऐप जो है वो शामिल हो जाएगा और फिर क्या है, जैसे ही आपको लगे कि आपकी कार की बैटरी आपको चार्ज करनी है, आपको सारे कतर के जितने भी ईवी चार्जिंग स्टेशन है उनकी लोकेशन मिल जाएगी। आप अवेलेबिलिटी देख सकते हो कि यहाँ पे अभी कोई और व्हीकल तो चार्ज नहीं हो रहा है, मुझे तो मिल जाएगी जगह, एंड अवेलेबिलिटी देखते ही आप वहां पहुंच जाइए, फटाक से अपना चार्जिंग मैनेज कर लीजिए। बिल्कुल मिलाकर ये कदम कतर जनरल इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कॉर्पोरेशन करामा का है, ताकि आने वाले टाइम में कतर में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिले और कतर का नेशनल विजन 2030 जो कि कार्बन इमिशन कम करने के लिए बहुत सारे मापदंड तय किए गए हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बनाए गए, उसको अचीव कर पाए। तो ऐसे में कतर के कारामा के ईवी चार्जिंग इंजीनियर हेसा फहद अल कुवारी ने कतर टीवी से यह कहा है कि चार्जिंग स्टेशन को इसीलिए बढ़ाया जा रहा है ताकि लोग हाइब्रिड व्हीकल्स और ईवी को ज्यादा से ज्यादा यूज करें एंड कतर के कार्बन इमिशन को कम करें, और जब सब साथ मिल जाएंगे तो ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर अगर चल रहे हैं तो घबराइए मत, पता लग जाएगा। यार कभी कभी लगता है डिजिटल एज में दुनिया कितनी सरल हो गई ना, विच इज थॉट।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है, फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी। डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस, मीट बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिएट वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल अंडर वन रूफ। तो मार्क योर कैलेंडर, 12 से 14 अक्टूबर, DECC दोहा, फूड कतर 2026। कनेक्ट, डिस्कवर और ग्रो।
6: छोड़ दे।
7: खट खट, हू दैट?
8: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट।

पता नहीं यार, इस बार बीच आउटिंग ना और खूबसूरत एक्सपीरियंस के साथ आ रही है। यस, 89.6 बीच वन पर मस्त मौला गौरव आपके साथ, और मैं बात कर रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी के बीचेस पर चलने वाले उन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की जो पब्लिक फैसिलिटी, पब्लिक सर्विसेज को और अच्छा करने के लिए हो रहे हैं। यस, कतर में 18 में से 8 ऐसे बीचेस अब आपके लिए ओपन है जहां पर पब्लिक फैसिलिटीज को बढ़ा दिया गया है, यानी कि पहले वहां शावर नहीं था वो हो गया है, आपके लिए चीजें इजी की गई हैं, बारबेक्यू बनाए गए हैं, एंड ऐसा 18 टोटल बीचेस पर होना है जिसमें से 8 में काम हो गया है, 10 में अभी भी चल रहा है, यानी कि आने वाले टाइम में हमारे आपके लिए बीच डेस्टिनेशन और एड ऑन हो जाएंगे, एंड हमारी और आपकी पार्टी और इजी हो जाएगी, एंड बच्चों के साथ, फैमिली के साथ जब भी हम जाएंगे, दोस्तों यारों के साथ, बहुत सारा फन मस्ती धमाल हमारा उस बीच पर अवेट कर रहा होगा। लेकिन इसके लिए अगर हमसे और आपसे सिर्फ ये उम्मीद की जा रही है कि हमें सफाई रखनी है, तो वो काम जरूर कीजिएगा। मैंने अक्सर देखा है लोग वाटर बॉटल्स लेकर जाते तो जरूर है, एंड बाद में वो प्लास्टिक की बची बॉटल्स वहीं छोड़ देते हैं। ये समझिए, कतर हमारा घर है, इसकी सफाई रखना हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है। जैसे आप अपने रूम को, अपने ड्राइंग रूम को, अपने बेडरूम को चकाचक रखते हैं ना, कतर भी हमारा घर है, इसको भी चकाचक रखा कीजिए। आइए वादा करें, इस बार जब भी हम बीच पार्टी पे जाएंगे, बारबेक्यू के लिए जाएंगे, हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, कोई भी सामान वहां छोड़कर नहीं आएंगे, सब गार्बेज बैग में डालकर उस बॉक्स में डालेंगे जो वहां पर गार्बेज बॉक्स होगा। इस उम्मीद से कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं और ये काम जरूर करेंगे। मस्त मौला गौरव लेगा अलविदा, लौटेगा कल शाम एक बार फिर से ढेर सारे फन मस्ती धमाल के साथ मिर्ची पर। तब तक ले अभी भी मां सलामा मिर्ची थॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: हुमा कुरैशी, आपका जो किरदार है बेबी डू डाई डू में, उसे महाराष्ट्र बनाने की कोई खास वजह थी?
3: नचिकेत सर आए, उन्होंने पढ़ी एंड देन एट सम पॉइंट नो आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज ही इज अ महाराष्ट्रियन बॉय। आई थॉट माय डायरेक्टर विल बी वेरी हैप्पी, अरे वाह यू नो ये हमारे खेड़े की कुछ वो करना चाहती है, बट आई थिंक वो डिसअपॉइंट हो गए कि ये नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने बोला कि तुम महाराष्ट्र नहीं हो पिक्चर में, मगर तुम बोल नहीं सकते।
2: ये थी हुमा कुरैशी टॉकिंग अबाउट बेबी डू डाई डू ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: भट्ट, अरे भट्ट हूँ।
5: भट भट भट भट भट भट भट बाइक बहुत आवाज करती है।
4: खट खट हू दैट,
6: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी आपके साथ। और आंख फड़फड़ाना, हाथ में खुजली होना, ये तो कुछ ऐसे निशान है जिनको कहते हैं कि अरे दाई आंख फड़फड़ा रही है तो मतलब कुछ बुरा होने वाला है, बाई आंख फड़फड़ा रही है तो कुछ अच्छा होने वाला है, दायां हाथ खुजला रहा है तो पैसा जाने वाला है, बायां हाथ खुजला रहा है तो पैसा आने वाला है। इन सारी बातों के परे एक शेर मुझे दिखा जो कि किसी चीज के आने के अंदेशे के बारे में था। शकीब जलाली साहब लिखते हैं कि आज भी शायद कोई फूलों का तोहफा भेज दे, आज भी शायद कोई फूलों का तोहफा भेज दे, तितलियां मंडला रही हैं कांच के गुलदान पर। मतलब गुलदान अभी तो खाली है लेकिन उस पे तितलियां मंडलाना शुरू हो गई हैं। तो हो सकता है आज भी शायद कोई फूलों का तोहफा भेज दे, तितलियां मंडला रही हैं कांच के गुलदान पर। ऑफ कोर्स ट्रस्ट अ शायर जिसको पैसे से मतलब नहीं है, फूलों से मतलब है कि नहीं। स्टेडियम टू मिर्ची आपका दाशी आपके साथ। इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot.
1: खट खट
2: कौन है?
1: अज्जू।
2: अज्जू कौन?
1: अज्जू ना आए बाल माँ, सावन बीता जाए। होए।
2: खट खट who that?
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

कि आपका ताशी आपको रूबरू कराए हमारे आज के शायर से, जो है मंजर भोपाली साहब। 1959 में इनका जन्म भोपाल में हुआ, जैसा कि इनके नाम से खुद ही पता चलता है, और जैसा इनके नाम से, इनके उपनाम से खुद ही पता चलता है, इनकी जो लिखाई है मंजर कशी सी है उसमें। मतलब एकदम सामने दिखा देते हैं लफ्जों से जो भी इनके जहन में बात चल रही होती है उसको। और इनका जो मेरा पसंदीदा शेर है आपको मैं सुनाता हूं, जमाने की सच्चाइयों के ऊपर शेर है। मंजर साहब लिखते हैं कि अब समझ लेते हैं मीठे लफ्ज की कड़वाहटें, अब समझ लेते हैं मीठे लफ्ज की कड़वाहटें, हो गया है जिंदगी का तजर्बा थोड़ा बहुत। तजर्बा तो लगता ही है यार, पहले समझ नहीं आता था जब पिताजी कहते थे कि हमने बाल ऐसे ही नहीं सफेद करे, लेकिन अब 30-31 की उम्र में आके ऐसा महसूस होता है कि सच ही कह रहे थे। अब समझ लेते हैं मीठे लफ्ज की कड़वाहटें, हो गया है जिंदगी का तजर्बा थोड़ा बहुत। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
4: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: कौन है?
6: स्टेन।
5: स्टेन कौन?
6: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
7: खट खट,
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। और देखिए, शायरी में ना लफ्जों का खेल यही होता है कि जो लफ्ज होता है उसके नीचे एक और मानी होता है। अब आप शेर सुने कि जब से मुंह को लग गई अख्तर मोहब्बत की शराब, बेपिए आठों पहर मदहोश रहना आ गया। अब यहां देखिए आप, शराब का मानी शराब नहीं है, मोहब्बत है। जब से मुंह को लग गई अख्तर मोहब्बत की शराब, बेपिए आठों पहर मदहोश रहना आ गया। एक और एग्जांपल दूंगा मैं आपको, जैसे हम सब की पसंदीदा जो गजल है कि हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है, उसका अगला शेर है कि उसमें से नहीं मतलब, मैं मतलब अल्कोहल, उसमें से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना, मकसूद है उसमें से दिल ही में जो खिंचती है। मतलब यहां अल्कोहल से मतलब नहीं है जब कोई मैं बोल रहा है या फिर शराब बोल रहा है, उसके नीचे एक और तह में एक और मीनिंग है जो कि बड़ा बेहतरीन है, उस पे ध्यान देने की जरूरत है। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: और अब आ गया है मिर्ची महफिल का मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा,
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: हाँ जी, आपका ताशी है आपके साथ और वक्त है ताशी अनप्लग्ड का। ये जो नगमा आज मैंने गाने की कोशिश करी है, ये राहुल देव बर्मन साहब, आरडी बर्मन साहब ने गुलजार के साथ बनाया और इसे गाया किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी ने। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक, वन ऑफ माय फेवरेट्स, एंड इसको निभाने की एक छोटी सी कोशिश मेरी तरफ से।

0: में कुछ।
1: बने रहिए और नगमों, किस्सों, गानों के लिए मिर्ची महफिल के साथ। आपका ताशी भी बैठा है आपके साथ इसी महफिल में। स्टे ट्यून्ड एंड इट्स

0: on Mirchi. It's hot.
1: 89.6 Mirchi. तूने अभी देखा है तो जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम

जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, इस जमाने की श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स। हेलो एंड वेलकम। आज ना एक ऐसे राइटर के बारे में बात करेंगे जिनका कमांड सिर्फ एक लैंग्वेज पे नहीं था, वो जितनी खूबसूरती से हिंदी में लिख लेते थे उतनी ही खूबसूरती से उर्दू में भी लिख लेते थे। उन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी फिल्में नहीं बनाई, अपने पूरे टेन्योर में सिर्फ 4 फिल्में, लेकिन उनके लिए कहा जाता है कि जब वो फिल्म बनाते थे ना तो पूरी तबीयत से बनाते थे, पूरा अपना टाइम लेकर के बनाते थे। जब आगे बढ़ जाते थे और उन्हें लगता था कि ये जो पोर्शन मैं ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ वो इतने बेहतर नहीं है, तो फिर से सब कुछ स्क्रैप करके फिर से नया शूट करते थे। वो हमेशा ये चाहते थे कि उनका ऑडियंस जब सिनेमा हॉल से उठे तो ये कहते हुए उठे कि वाह कमाल अमरोही ने क्या फिल्म बनाई। तो आज कमाल साहब की बात करेंगे जिन्होंने मीना कुमारी के साथ बनाई पाकीज़ा, हेमा मालिनी के साथ बनाई रज़िया सुल्तान, मधुबाला के साथ बनाई महल। तो बस कहीं भी मत जाना, श्रेया के साथ यहीं रुकना, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

जब भी वो अपना लिखा कुछ पढ़ते थे ना, तो लोगों की महफिल जम जाती थी और तालियों की गड़गड़ाहट की गूंज दूर तक सुनाई देती थी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही कमाल अमरोही साहब की। अच्छा, अमरोही कैसे, ये नाम कैसे पता? ये उनका सरनेम नहीं था एक्चुअली, ये पैदा हुए थे यूपी के एक छोटी सी जगह जिसका नाम था अमरोहा में। मुंबई गए, वहाँ काम करने लगे, लेकिन अपने अमरोहा को बहुत मिस करते थे, तो उन्होंने अपना नाम रख लिया कमाल अमरोहा से अमरोही, वही नाम जिससे हम उन्हें पहचानते हैं। अच्छा, कमाल अमरोही को बॉलीवुड में, ओ सॉरी, उस टाइम तो इसे इंडियन सिनेमा कहते थे, यहाँ पर लेकर के कौन आया? अभी बताऊंगी, श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
4: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
0: मिर्ची इट्स हॉट।
5: खट खट,
6: हु दैट?
5: अकबर।
6: अकबर हु?
5: अरे अकबर बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे।
6: खट खट, हु दैट?
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

वो क्या कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी को होती है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही कमाल अमरोही साहब की। आपको पता है उनको इंडियन सिनेमा में कौन लेकर के आया था? वो जिनका नाम लेते हुए भी इस समय ना मेरे हाथ कानों को छू लेते हैं। इट वॉज नन अदर देन केएल सहगल साहब। तो केएल सहगल कमाल साहब से मिले थे एक पार्टी में। वहां पर कमाल साहब को कोई खास जानता नहीं था। केएल सहगल से वो एज अ फैन बॉय मिलने गए और उनकी तारीफ में अपना लिखा हुआ कुछ पढ़ा। सहगल साहब उनकी लिखावट से इतने इम्प्रेस हुए क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि ये नया लड़का जरूर इंडियन फिल्म्स में कुछ कर सकता है। उन्होंने ऑफर किया कि चलो भाई मेरे साथ बॉम्बे चलो, तुम यहाँ के लिए नहीं वहाँ के लिए बने हो। बस कमाल साहब को तो एक मौका चाहिए था। वो मुंबई पहुंच गए और वहां पर उनकी मुलाकात हुई शुराब मोदी से, जिनके साथ उन्होंने जेलर, पुकार इन दो फिल्मों पे काम किया। पर वो कौन सी फिल्म थी जिसने रातों रात कमाल साहब का नाम हर घर में पहुंचा दिया? अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: तुषार कपूर, आपका कैरेक्टर इन गोलमाल फ्रेंचाइज इज सेंसेशनल। कितना मजा आया

0: आप सुन रहे हैं
1: मिर्ची इट्स हॉट बॉलीवुड पोर्टल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड
2: पोर्टल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट खट खट
3: कौन है
2: ईशांत
3: ईशांत कौन
2: ईशांत गदाधारी भीम ईशांत
3: खट खट हू दैट
4: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 मिर्ची इट्स हॉट
5: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
6: आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई

0: फिल्म बनी
1: जिसने बहुत सारे उन कलाकारों को पहली बार जगह दी जो इंडियन सिनेमा में आने वाले कई सालों तक राज करने वाले थे। कमाल अमरोही साहब की पहली गोस्ट फिल्म जिसका नाम था महल, इस फिल्म से अपना डेब्यू किया मधुबाला जी ने और उनपे एक गाना पिक्चराइज किया गया था आएगा आने वाला, जो कि गाया लता जी ने। लता जी ने वैसे बहुत सारे गाने गाए थे इससे पहले, लेकिन उनका गाया हुआ ये गाना जब ऑल इंडिया रेडियो पे आया ना, तो वहाँ के फोन ना बजते हुए रुक नहीं रहे थे ये पूछने के लिए कि ये गाना किसने गाया है। सो इन अ वे लता जी का भी ये डेब्यू था, विच मेड हर अ स्टार। एंड ऑफ कोर्स इस फिल्म से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे थे कमाल अमरोही। पुरानी जीन्स पर आज उन्हीं की बातें विद मी श्रेया। सो वापस आओ।

इस फिल्म से बहुत सारे लेजेंड्स अपनी शुरुआत करने वाले थे। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। तो आज कमाल अमरोही साहब की बात हो रही है। उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू एक ऐसी

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
1: सर कार में बच्चे उल्टी कर देते हैं, क्या करूं?
2: अरे अरे अरे सिंपल है ना, तुम एक काम करो, गाड़ी को रिवर्स में चलाओ। कार उल्टी चलेगी तो बच्चे भी सीधी करेंगे।

अच्छा, पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब कोई डायरेक्टर अपनी फिल्म बनाता था ना, तो वो इक्वली इन्वेस्टेड, इक्वली इन्वॉल्व होता था इन द म्यूजिक ऑफ द फिल्म, इन द डायलॉग्स ऑफ द फिल्म. मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे, लेकिन डायरेक्टर का इनपुट सबसे इम्पोर्टेंट. और अगर कहीं वो कमाल साहब की फिल्म, तो वो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग तक में उतर आते थे. इतनी बारीकियां. आपको पता है फिल्म पाकीज़ा, जो उन्होंने मीना कुमारी यानी अपनी वाइफ के साथ बनाई थी, इस फिल्म को बनाने में कई साल लग गए. एक तो मीना कुमारी और कमाल साहब के बीच में मनमुटाव हो गया था, दोनों अलग हो गए थे, तो इसलिए फिल्म रुक गई थी 10 सालों के लिए. उसके बाद जब बननी भी शुरू हुई, तो कमाल साहब वो सो पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग कि जो एक्स्ट्रास होते थे ना, उनकी ज्वेलरी, उनकी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग सब वो खुद किया करते थे. अब भाई इस फिल्म की बात हुई है, तो इसी फिल्म का गाना ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है. सो पाकीज़ा का गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू. मेरा नाम है श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: कुड आई स्पीक टू मनीष प्लीज?
3: स्पीकिंग,
4: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके मनीष, आई नीड योर फेवर, आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी। मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट, कि पहले इंसान एप था, आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में, यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया, राइट।
3: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
4: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट। एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे। इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके?
3: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ।
4: वही तो, ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था, तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे। तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर। आई एम श्योर कि सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था। बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी। तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए, कल का रख ले। मेरी बात सुनो, आई एम प्रोफेसर, मेरी बात सुनिए यार। हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है।
3: हेलो,
4: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी, मेरी बात सुनिए, मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने, उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार, मैं मुर्गा बनाया है, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार। मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार। इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: हेलो शॉप्स, आप प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
6: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
5: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
7: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
8: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
9: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

आज एक ऐसे डायरेक्टर, एक ऐसे राइटर के बारे में बात हो रही है पुरानी जीन्स पे, जिनके लिए कह सकते हैं दैट ही वाज मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया, कमाल अमरोही साहब, जो जब फिल्म बनाते थे ना तो तबीयत से बनाते थे, पूरा समय लेकर के बनाते थे। इसीलिए अपने पूरे टेन्योर में उन्होंने सिर्फ चार फिल्में बनाई। जब उन्होंने महल बनाई, जो कि फर्स्ट हॉरर फिल्म कही जाती है, मतलब फर्स्ट प्रॉपर कमर्शियल हॉरर फिल्म ऑफ इंडिया कही जाती है, जब वो बना रहे थे ना, तो उसके डायलॉग्स में भी इक्वली इन्वॉल्व थे। इस फिल्म के डायलॉग्स पूरे इंडिया में पॉपुलर हुए। एक डायलॉग था, मुझे जरा होश में आने दो, मैं खामोश रहना चाहता हूँ, विच बिकेम इमेंसली पॉपुलर। और दूसरा पता है कौन सा था? स्लो पॉइजन अक्सर मीठे होते हैं और धोखे अक्सर हसीन। मुझे लगता है कि जब भी उस जमाने में कोई अपनी गर्लफ्रेंड से धोखा खाता था तो ये डायलॉग जरूर बोलता होगा। कमाल साहब की आज कमाल की बातें विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। बस वापस आओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज।
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
4: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: हाउस ऑफ जोश,
6: हाय सर। हाउस ऑफ जोश,
5: हाय सर।
7: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची 1। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इससे पहले तक इंडियन सिनेमा में ऐसा नहीं हुआ था जो कमाल साहब ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू महल फिल्म के साथ किया। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। तो आज कमाल अमरोही की बात हो रही है, उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू थी महल। पहली बार ऐसा हुआ जब ये भूत वाली फिल्म में एक बैकग्राउंड गाना दिया गया और वो थ्रू आउट द फिल्म कैरी फॉरवर्ड रहा। मतलब वो गाना इंडिकेट करता था कि फिल्म में अब कुछ भूतिया होने वाला है, फिल्म में अब कुछ सस्पेंस आने वाला है, है ना। कमाल साहब की शुरुआत करने के बाद इस ट्रेंड को इंडिया की हर सस्पेंस, हर मिस्ट्री फिल्म ने, हर घोस्ट फिल्म ने फिर फॉलो किया। फिर चाहे वो मधुमती हो, वो कौन थी हो, या फिर मेरा साया। तो इसकी शुरुआत करने वाले वही थे अपने कमाल अमरोही। पुरानी जीन्स पे आज उन्हीं की बातें बैक टू बैक विद मी श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: भूमि पेडनेकर, हमारे स्कूल में तो टॉयलेट में जाके टॉयलेट करते थे, आपके स्कूल में क्या करते थे?
4: In our school, toilet used to be the place जहाँ पे सब जाके रोमांस करते थे। That used to be the spot in my school.
5: स्कूल था, कंजर खाना खोला हुआ था।
4: दोनों।
3: इसी कहानी से मुझे लगता है टॉयलेट एक प्रेम कथा का नाम रखा होगा। नहीं, आप सुन रहे थे अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

अच्छा, आजकल एक ही डायरेक्टर कई सारी फिल्में बनाते हैं, लेकिन कमाल अमरोही साहब ने अपने बहुत बड़े करियर में सिर्फ 4 फिल्में बनाई, क्योंकि वो हमेशा ये चाहते थे कि वो क्वालिटी वर्क बनाए। वो हमेशा ये चाहते थे कि जब भी ऑडियंस सिनेमा हॉल से निकले ना, तो ये याद करके निकले कि उन्होंने कमाल अमरोही की फिल्म देखी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। वो 4 फिल्में जो कमाल साहब ने बनाई, एक तो महल, दूसरी पाकीज़ा, तीसरी रजिया सुल्तान और एक चौथी थी जिसका नाम था दायरा। इन सबके बीच में ना एक फिल्म बनाने का सपना उनका अधूरा रह गया। वो कौन सी फिल्म थी अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर 89.6
1: It's hot.

कमाल अमरोही साहब जैसे इंसान जब किसी को तोहफा देंगे तो वो भी तो एकदम कमाल, एकदम नायाब होगा। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। हाँ, तो कमाल साहब की बात हो रही है, उनकी और मीना कुमारी की शादी की पहली रात। कमाल साहब मीना कुमारी के पास गए। अब भाई वो ट्रेडिशन होता है ना कि आप शादी की पहली रात कोई तोहफा दोगे अपनी वाइफ को। कमाल साहब गए मीना कुमारी के पास और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा तोहफा लाया हूँ जो जिंदगी भर तुम्हें याद रहेगा। एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा मैं तुम्हारे ऊपर जिससे ये दुनिया जब भी तुम्हारा नाम लेगी तो वो फिल्म का नाम भी साथ में आएगा। ये फिल्म उन्होंने बनाई। ऑफ कोर्स काफी साल लग गए इस फिल्म को बनने में क्योंकि दोनों बीच में अलग हो गए थे, बट दे केम बैक टुगेदर टू कंप्लीट दिस फिल्म। फिल्म का नाम पाकीज़ा, जिसमें बेहद खूबसूरत लगी मीना कुमारी। तो ये थी पाकीज़ा की शुरुआत होने की कहानी। एक और कहानी बाकी है अभी कमाल साहब की एक अधूरी फिल्म की, बताऊंगी उसके बारे में भी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

महल बनाई इन्होंने, पाकीजा बनाई इन्होंने, रजिया सुल्तान बनाई इन्होंने। अब इनका ड्रीम था आखिरी मुगल बनाने का। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही है राइटर डायरेक्टर कमाल अमरोही साहब की। तो मैं बता रही थी कि कैसे पूरे टेन्योर में सिर्फ 4 फिल्में इन्होंने बनाई और एक फिल्म पे काम कर रहे थे। इनका ड्रीम था हिस्ट्री पे एक फिल्म बनाने का और उसका नाम इन्होंने रखा था आखिरी मुगल। इस फिल्म की स्क्रिप्ट उन्होंने आधी लिख ली थी और स्क्रिप्ट से पहले इसके गाने भी बन गए थे, पर ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई। उनके जाने के बाद लोगों ने इस स्क्रिप्ट को ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन कमाल साहब की लिखी हुई ये कहानी कहीं खो गई। लेकिन हाँ, गानों का कुछ हुआ। क्या हुआ? आपको तो पता ही है, ऐसे इतनी जल्दबाजी में मैं कुछ नहीं बताती हूँ। गाने सुन करके वापस आओ, विल लेट यू नो पूरी कहानी, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
4: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, महापुरुष।
6: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स,
7: जबरदस्त ट्रैक्स।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
8: 89.6
9: FM Mirchi 1. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

1989 में एक फिल्म आई जिसने कमाल अमरोही साहब की अधूरी फिल्म आखिरी मुगल का एक गाना ले लिया, एक गाना यूज किया। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूं श्रेया और आज कमाल अमरोही साहब की बात हो रही है। सो एक अधूरी फिल्म वो छोड़ करके गए जिसका नाम था आखिरी मुगल। उनका ये ड्रीम था कि वो एक ऐसी फिल्म बनाए जो कि इंडिया की हिस्ट्री पे हो। इस फिल्म का नाम उन्होंने रखा था आखिरी मुगल। कमाल साहब वॉज प्लानिंग द फिल्म, आधी फिल्म लिख ली थी लेकिन इसके गाने कई सारे रिकॉर्ड कर लिए थे। अब फिल्म तो बीच में रुक गई थी, तो पता है उन्होंने एक गाना सेल किया और ये उन्होंने दिया था टू द मेकर्स ऑफ अ फिल्म जिसका नाम था जिस्म का रिश्ता। 1989 में ये फिल्म आई थी और इसी फिल्म में रफी साहब का एक गाना यूज हुआ था जो कि आखिरी मुगल के लिए बनाया गया था। पुरानी जीन्स पर कमाल अमरोही साहब की ये कमाल की बातें आज चलती रहेंगी, तो बस कहीं भी मत जाना। मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: अर्शद वारसी, आपका एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम चल रहा है, चाहे ओटीटी की बात हो या थिएटर की। प्रीतम और पेड्रो में आपने राजकुमार हिरानी से अच्छे खासे पैसे मांगे होंगे, नहीं?
4: पैसे तो मैंने दिए इनको काम करने के लिए।
5: वो पिक्चर चलने पे डिपेंड करता है।
6: पिक्चर बिट गई तो इससे बुरा साल नहीं होगा।
7: फिल्में उनकी दो, एक सीरीज एक फिल्म। मैं ही हूँ जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हूँ।
3: राजकुमार हिरानी में एवरीवन बी एज अनएम्प्लॉयड एज यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑल।
1: बॉलीवुड बोल डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
8: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं सुन सकते।
9: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
10: बहुत कुछ होगा।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
13: मिर्ची स्टोरीज, स्टोरीज
14: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
15: भाई, एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं, बल्कि कम कर दी।
9: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार, इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
11: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: 89.6, 89.6, आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
16: तुमने कभी किसी से प्यार किया?
17: किया।
16: कभी किसी को

पुरानी जीन्स पर श्रेया का जाने का टाइम हो गया है और जब मैं जाती हूँ तो आपको तो पता ही है मैं अपने साथ गाड़ी में आपको बैठा ले जाती हूँ और कहाँ जाते हैं अच्छा आज का हाईवे हिट उन लोगों पे है जो ना जुबान से ज्यादा बात नहीं करते, उनको सामने वाले की नजरों से सब पता चल जाता है। पूरा कमरा भरा हो सकता है, पूरा हॉल भरा हो सकता है लोगों से, लेकिन इनकी बातें नजरों से चल रही होती हैं और शायद कुछ ऐसा कह रही होती हैं। बहुत कम लोगों की नजरें आपको प्यार के काबिल समझ पाती हैं। अगर ऐसी कोई नजर आपके पास है ना, उसे संभाल के रखना। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे?

0: कई साल पहले की ये बात है।
1: बोलो मां, चुप क्यों हो गए?
0: भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

ग्वाले करने को हुड़दंग, गोविंदा के दिन सब हो गए हैं, गोविंदा के संग। अरे समझे,